सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

0: तू ही मेरा रब, तू ही मेरा सब, जो आके मैनू छू वो हवावा विच तू, दिल विच तू, साहा विच तू, मैं जित्थों मिलूंगा ना रहा विच तू। इको आ दुआ मेरे उस रब नू, मैं जिन्ने पल भी जीवा होवे पहा विच तू।
1: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

इनमें की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: आसमानी अर्जित तनीशा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: तनिषा
1: सचेत और परंपरा नंदन की आवाज में ब्यूटीफुल ट्रैक मेरे सोने ऑली ऑन रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स लेकर आई हूं जी मैं ट्यूसडे का दिन अगस्त 18th पहले पूछूंगी कल का दिन कैसा रहा आपका सब ठीक था ना किसी चीज ने परेशान तो नहीं किया किया तो इट्स ओके उसको कल पे छोड़ देने का आज उसके बारे में नहीं सोचना ना बातें करना ठीक है बाकी आज क्या प्लान्स है फिलहाल क्या कर रहे हैं निकल चुके हैं ऑफिस के लिए या फिर निकलने वाले हैं या फिर अभी उठे हैं तैयार हो रहे हैं रेडी कर रहे हैं चीज़ें ऑफिस के लिए व्हाट्स गोइंग ऑन दोज हु आर ऑन द वे अगर आप बस में हैं वैन में हैं ड्राइव कर रहे हैं अ वेरी गुड मॉर्निंग आई होप यू गाइस हैव एन अमेजिंग डे टू योर सेल्फ और बढ़िया गाने तो देखो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आतिफ असलम की आवाज में ये खूबसूरत गाना और साथ में
2: तलक जाना सारी दुनिया तू जुबान चाहे ना खो बोल पावे ना
1: ब्यूटीफुल ट्रेलर यार कल ट्रेलर देखा इस मूवी का बहुत खूबसूरत है
2: ख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए
1: कबीर सिंह से बेख्याली और साथ में मैं वापस आऊंगा से ये मेरा बहुत जोर से फेवरेट वाला गाना
3: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास मैं
1: ये सभी खूबसूरत गाने इस घंटे में आपके लिए और भी बहुत सारे सरप्राइजेस हैं ढेर सारी बातें करेंगे पर पहले आपके हालचाल तो आ जाओ गुड मॉर्निंग मैसेजेस कर दो 3311 1063 पर और यू कैन कॉल 4444 1063 पर स्टे ट्यून्ड रहो बिंदास मेरी जान

0: 106.3 FM, Gio Bendaz.
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओपनिंग ऑन 19th अगस्त इवनिंग ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा। द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर। बी रेडी टू

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में। बिंदास मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: तनीषा के साथ हैं आप रेडियो 106.3 FM पर बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर एंड वी हैव गॉट सम गुड मॉर्निंग मैसेजेस ओवर हियर. नाजनी जी का मैसेज है, अबरार जी, शशिकांत पाटिल जी का मैसेज है और संत जी भी आ चुके हैं. अलोंग विद दैट मोहम्मद जी का मैसेज आया है, जसा जी का मैसेज आया है और राहुल जी का मैसेज आया है. अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरी वन. और मेरी स्पेशल वाली गुड मॉर्निंग तो हो जाए.
1: गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल,
0: ओए होए,
1: लुकिंग वेरी गुड, वेरी नाइस. गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल, लुकिंग वेरी गुड, वेरी नाइस.
0: हां जी, वेरी गुड, वेरी नाइस ही लुक करते रहना है और एकदम बढ़िया तरीके से अपना दिन बताना है. छोटी मोटी बातों पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेने का है. ठीक है, बाकी मैं हूँ आपके साथ बिंदास, आके मुझसे शेयर कर सकते हो यार 3311063 पर. स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास.
2: कूल सॉन्ग
0: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
3: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है.
2: कूल सॉन्ग.

0: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरेडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू. मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर. मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा.
1: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

अलका याग्निक और शान की आवाज में तेरे बिना। इस गाने में कोरियोग्राफर ने कहा भाई जिसको जो आता है वो कर लो। आप इसका वीडियो देखोगे ना यू विल रियलाइज कि एक्चुअली यही हो रहा है। जिसका जो मन आ रहा है वो करता ही जा रहा है। क्रेजी, एब्सोल्युटली क्रेजी वीडियो। तनीषा के साथ आप रेडियो 106.3 एफएम पर बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर। और एक बड़ी ही कमाल की चीज पढ़ी मैंने जो कि आपसे शेयर करना तो बनता है मेरी जान। सो इट सेज डोंट लेट अ 10 मिनट प्रॉब्लम कंज्यूम योर 24 आवर्स ऑफ द डे। एंड आई यूज टू डू दैट ऑनेस्टली। एक छोटी सी चीज, मतलब कुछ सेकेंड्स के लिए कोई बात किसी ने कह दी, कुछ बहुत छोटी सी चीज हो गई, वो मुझे इतना बॉदर करती थी कि मैं पूरा दिन उसके बारे में सोच के पूरा दिन खराब कर लेती थी अपना। क्योंकि आई एम कॉन्स्टेंटली इन द बैड मूड बिकॉज मुझे ये एक चीज पूरे 24 आवर्स में से मुझे ये फ्यू सेकेंड्स के लिए ये चीज बुरी लगी थी और मैंने पूरा दिन उसके बारे में सोच के बर्बाद कर दिया। बट देन आई रियलाइज कि क्या पॉइंट है इसका, मैं उसके बारे में कुछ कर तो नहीं पा रही हूँ ना। इंस्टेड जो चीजें मैं इंजॉय कर सकती थी मैंने उन्हें इंजॉय नहीं किया क्योंकि आई वॉज इन अ बैड मूड। सो जस्ट लेट इट गो, ठीक है। और कभी भी गुस्सा आ रहा है ना किसी भी चीज पे तो 6 सेकंड का पॉज ले लो, क्योंकि उस पॉज में आपको रियलाइज हो जाएगा रिएक्ट करने के पहले कि भाई ये जो सिचुएशन है ये रिएक्शन डिजर्व ही नहीं करती। जी हाँ, इसमें जरूरत ही नहीं है, तो टल जाएगा। बढ़िया है, ऐसे करना चाहिए। आई हैव स्टार्टेड स्लोली एंड स्टेडिली एंड आई होप आप भी करेंगे अगर जरूरत है तो। और सुनते रहिए रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास मेरी जान।

0: Olive Bay. Story of the day.
1: Story of the day.
2: बास का बच्चा मुर्गियों के साथ बड़ा हुआ तो पूरी जिंदगी जमीन पे गुजार दी, क्योंकि उसे लगता था वो उड़ नहीं सकता। एक दिन असली बास ने उसे देखा और बोला, तुम मुर्गी नहीं आसमान के बादशाह हो। उसने डरते डरते पंख खोले, एक लंबी छलांग लगाई और पहले ही बार में डर को हरा कर आसमान की बुलंदियों पर छा गया। अगर आप भी हालात से डर कर रुक गए हैं तो आज लोगों की परवाह किए बिना अपने पंख फैलाइए और एक लंबी छलांग लगाइए। आप आसमान के लिए बने हैं, जमीन के लिए नहीं। बस हार नहीं माननी है।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: फिर से स्कूल। अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ओलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है, तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है। अभी जाओ olive.qa पर बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है। स्पॉट्स लिमिटेड है, तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर। मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में। वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
2: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
1: एंड
2: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
1: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
2: कॉल 7022525।
1: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स Gulf on Instagram.
3: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
1: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding at the

0: मैं हूँ सारिका। आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3।
1: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: तनिषा
1: तनिषा You're listening to Radio Ala 106.3 FM. Malang in the voice of Asis Kaur. सुना आपने तनिषा के साथ हैं आप बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर और वक्त हो चुका है तो फिलहाल मैं आपकी मेमोरी चेक कर रही हूँ कि मेरे पहले पूछे हुए सवाल आपको याद है कि नहीं कैन यू कीप अप विद मी और नॉट सो ये क्वेश्चन मैं पहले भी पूछ चुकी हूँ एंड आई एम आस्किंग इट अगेन बताएं मुझे एक सिमी नाम की लड़की चाय लेकर आ रही है तो उसे इंग्लिश में एक वर्ड में क्या बोलेंगे सो बेसिकली आंसर जो है ना उसको ब्रेक डाउन करेंगे उस वर्ड को संधिविच्छेद कर देंगे उसका तो यू विल गेट द आंसर सिमी नाम की लड़की चाय लेकर आ रही हो तो उसे क्या कहेंगे 3311-1063 पर मैसेज कीजिए और बताइए मुझे या फिर कॉल कर दीजिए 4444-1063 पर फिलहाल दीपाली सहाय की आवाज में सुनते हैं तेरे पास में स्टे ट्यून्ड एंड जी बिंदास

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओपनिंग ऑन 19th August इवनिंग ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा। द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर। बी रेडी टू

0: दस मॉर्निंग अर्जित तनीशा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: Nisha.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Dinesha ke saath hai aap Bindaas Morning chal rahe hain abar.
2: Lame jams.
1: So lame jams mein maine pucha tha ki Simi naam ki ladki agar chai lekar aaye to use English mein ek word mein kya kahenge aur mujhe bilkul disappoint nahi kiya gaya. I have got the answers over here and yes the correct answer is similarity. Jab aap Simi Larry टी को ऐसे संधि विच्छेद करोगे ब्रेक करोगे तो यू विल गेट द आंसर सो या आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू राइट नाउ एंड वी हैव सम रियली अमेजिंग ट्रैक कमिंग अप योर

मसाला। आपकी कन्विंसिंग पावर मुझे थोड़ी स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही है सर। All these amazing tracks are coming up your way. Stay tuned to Radio Oliver 106.3 FM. Jio Bindas.

नमस्कार, माय नेम इज आशीष विद्यार्थी एंड यू आर लिस्निंग टू कतर्स टॉप मोस्ट हिंदी एफएम चैनल 106.3 रेडियो ऑलिव जियो बिंदास।

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: तनिषा के साथ हैं आप रेडियो 106.3 एफएम पर. बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर. 100 तरह के दर्द तो भाई ये हमें वेदर दे रहा है. क्रेजी मान ही नहीं रहा है ये तो. आज भी 36 डिग्रीज है एंड इट फील्स लाइक 45 डिग्रीज. यस सर. और हीट इंडेक्स जो है वो 47 डिग्रीज है और विंड इज 4 किलोमीटर्स पर आवर. सो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए. पानी वानी पीते रहिए. यू नो स्टे हाइड्रेटेड. लाइट खाना खाइए और बाहर निकल रहे हैं तो भर भर के सनस्क्रीन लगाइए. इसमें तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. समझ रहे हो बात को. और आप बहुत इंपॉर्टेंट हो सो प्लीज़ अपना ख्याल रखा करो. और सुनते रहो रेडियो 106.3 FM जियो बिंदास.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है. जबरदस्त

0: सुनो सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
1: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
0: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
1: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओपनिंग ऑन 19th August इवनिंग, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा। द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर, बी रेडी।

0: Nisha.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Dinesha के साथ हैं आप बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कहा है कि जो भी बिजनेसेस या फिर इन्वेस्टर्स हैं दे शुड वेरीफाई कंपनीज बिफोर एंटरिंग इनटू एनी काइंड ऑफ पार्टनरशिप्स और साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स क्योंकि यू नो द स्कैमर्स आर वेरी वेरी स्मार्ट नाउडेज तो हमें विजिलेंट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और टू वेरीफाई दिस बिजनेसेस जो है वो यूज़ कर सकते हैं MOCI की जो डिजिटल कंपनी इंक्वायरी सर्विस है वहां पर आप ऑफिशियल कंपनी इंफॉर्मेशन के बारे में जान सकते हैं चेक कर सकते हैं उसे और ये जो सर्विस है इट अलाउज यू टू वेरीफाई कमर्शियल रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी बिजनेस एक्टिविटीज ownership and legal structure, licensing status, regulatory compliance records and everything so that aap safe rahein aur aapko sari cheeze acche se, you know, clarity ho before entering into any kind of partnership with any of the companies. So please is cheez ka dhyan rakhein aur ye jo initiative hai ye particularly relevant hai Qatar ke liye kyunki jo growth ho rahi hai na is waqt private businesses, entrepreneurship aur foreign investment mein so usme ye clarity bahut zyada zaruri एक्सपर्ट्स जो है वो भी रेकमेंड करते हैं कि बैकग्राउंड चेक्स तो होने ही चाहिए ये इट शुड बी अ स्टैंडर्ड स्टेप बिफोर ऑनबोर्डिंग न्यू बिजनेस पार्टनर्स सो प्लीज इस चीज का ख्याल रखें और सुनते रहिए रेडियो 106.3 FM जियो बिंदास

0: are listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर.
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है. ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ.
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है.
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है.
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए. अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.
3: डॉक्टर ऑन एयर ब्रॉट टू यू बाय नसीम हेल्थकेयर.
4: Hi, I'm Dr. Sarah Ali from Nasim Medical Center Al-Khor. Do you know the best time to take different types of vitamins? Let's divide into two groups. First group, fat-soluble vitamin. This includes vitamin D, A, and E. It's better if you take it with fatty meal for better absorption. Second group, it's water-soluble vitamin, vitamin C and B12. Better if you take it first thing in the morning with plenty of water for better absorption.
3: Dr. On Air. Brought to you by Nasim Healthcare.
5: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
6: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Nasim Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Nasim Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: Tanisha.
1: Tanisha. You're listening to Radio 106.3 FM. Tanisha ke saath hain aap. Bindas morning chal raha hai yahan par. Hema Sardesai aur Shahrukh Khan ki awaaz mein. Apun bola tu meri Laila, wo boli phekta hai sala. Kyunki aapki convincing power strong nahi hai. नहीं कर पा रहे हो आप, बट मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप चाहते हैं इस चीज में पार्टिसिपेट करना. आई एम टॉकिंग अबाउट बैक टू स्कूल. यस, तो जल्दी से अपने बच्चों को रजिस्टर कर लीजिए क्योंकि बहुत कम स्लॉट्स बाकी हैं. रजिस्ट्रेशंस विल क्लोज सुपर सून एंड इफ यू हैव रजिस्टर्ड वंस, लेट मी टेल यू, इसे आप एज गुड एज कॉन्फर्मेशन ही समझिए, बट स्टिल व्हेन इट क्लोजेस वी विल लेट यू नो अबाउट इट. ठीक है, 27 अगस्त को हम मिल रहे हैं अबू सिद्रा मॉल में बैक टू स्कूल के लिए दोपहर 3 से शाम 7 बजे तक. बहुत सारा फन होगा, गेम्स होंगे, मस्ती करेंगे. इट विल बी अ गुड डे यार. तो रेडियो जाइए उसके लिए और सुनते रहिए रेडियो ऑलिव. चियो बिंदास.
2: Venue partner, Abu Sidra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sidra Mall, a complete family destination.
3: Gifting partner, Daiso Japan. You name it, we have it.
2: And
3: Doha Center, shop more, pay less.
2: Old Airport Road, Doha and Alcor.
3: Call 70222525.
2: Creative partner, Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
4: Pizza partner, Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
2: Refreshment partner, Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding. As

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओपनिंग ऑन 19th अगस्त इवनिंग ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा। द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर, बी रेडी टू शॉप।
3: फिर से स्कूल। अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों, जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27th दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है, तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है। अभी जाओ olive.qa पर बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है। स्पॉट्स लिमिटेड है, तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर। मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में। वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
4: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
3: एंड
4: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस।

0: दस मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: Tanisha.
1: Few days back I was talking about this and आज देखो मैंने ये पढ़ भी ली थी. तनिषा के साथ आप रेडियो 106.3 FM पर बिंदास मॉर्निंग्स चल रहा है यहाँ पर. एंड कुछ दिन पहले ही मैं बात कर रही थी ना कि यार दिस इज़ वेरी आइरोनिक कि हमें एक मशीन को बताना पड़ता है, वेरीफाई करना पड़ता है कि हम इंसान हैं सो दैट इट लेट अस यूज द वेबसाइट. सर्टेन वेबसाइट्स में होता है ये वेरीफिकेशन. नाउ यस्टरडे आई सॉ वन वीडियो जिसमें एक रोबोट उसे एज ह्यूमन वेरीफाई कर रहा था और उस मशीन ने एक्सेप्ट कर लिया. सो इट इज एज गुड एज नथिंग. क्या पर्पस सॉल्व किया उसने? रोबोट ने ही बता दिया आपको कि वो इंसान है पर आपको पता ही नहीं चला. दिस इज क्रेजी द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन राइट नाउ. कुछ भी हो रहा है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, कुछ भी हो रहा है. सम थिंग्स आर यू नो सम इन्वेंशंस आर रियली अमेजिंग, लेकिन कुछ जो है एकदम ही बर्बाद है. फिजूल, वक्त ज़ाया करना, हमें और ज़्यादा आलसी बना देना, ये सब चीज़ें हो रही हैं. सो या दैट्स द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन. व्हाट इज़ दैट वन इन्वेंशन आई वुड वांट टू नो कि आपको लगता है कि बहुत ही अननेसेसरी है, इसकी तो ज़रूरत हमें थी ही नहीं? बताएं मुझे 3311 1063 पर एंड स्टे ट्यून्ड टू रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास.

0: Kolkata's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओपनिंग ऑन 19th अगस्त इवनिंग ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा। द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर, बी रेडी टू शॉप।
3: मैं हूं आदा शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3।

0: तनिषा
1: इंडिया में एक बहुत ही कमाल की चीज हुई है यार, आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। तनिषा के साथ हैं आप रेडियो 106.3 एफएम पर, बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर। एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है फ्लाइब्रेरी, यस दैट इज फ्री लाइब्रेरीज फॉर फ्लाइट पैसेंजर्स। 56 एयरपोर्ट्स पे ये खुलेगी एंड वहां पर आप एक बुक पिक कर सकते हैं, लाइक आई एम फ्लाइंग फ्रॉम दिल्ली टू इंदौर, ठीक है। सो मैं दिल्ली एयरपोर्ट से एक बुक पिक कर सकती हूँ एंड ऑन माई फ्लाइट आई कैन रीड एंड देन इंदौर एयरपोर्ट पे सेम फ्लाइब्रेरी में मुझे वो बुक सबमिट कर देनी है, रिटर्न कर देनी है। एंड दैट इज सच अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट। एक तो हमें बुक्स पढ़ने की बहुत बहुत ज़रूरत है, उसमें एड्स नहीं आती है, बेस्ट पार्ट तो ये है, ठीक है। दूसरा हमें अपने फ़ोन से वो स्क्रीन टाइम से थोड़ा सा दूर जाने की भी बहुत ज़रूरत है और अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को और बढ़ाने के लिए बुक्स से बेहतर जरिया कोई नहीं है। इट इंक्रीजेज योर इमेजिनेशन, वो उसको ट्रिगर करता है, वो उसको हाइप अप करता है। यू आर फोर्स टू इमेजिन थिंग्स व्हेन यू रीड, सो प्लीज़ रीड, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और ये जो लाइब्रेरीज आई हैं इंडियन एयरपोर्ट्स पे, आई वुड से कि सभी एयरपोर्ट्स पे आनी चाहिए, बिकॉज ड्यूरिंग फ्लाइंग वी आर वॉचिंग मूवीज, शोज, गेम्स खेल रहे हैं फ़ोन पे, रादर देन दैट इफ़ यू कैन रीड अ बुक दैट इज़ अ रियली गुड यूज़ ऑफ आर टाइम। क्या बोलते हो, मानते हो ना मेरी बात, अग्री कर रहे हो, है ना, बता दो मुझे। 3311063 पर एंड स्टेडियो टू रेडियो ऑलिव, थ्री ओ बिंदास
2: रेडियो ऑलिव पर। आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
3: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है, कूल सॉन्ग।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
2: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
3: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio 106.3 FM. Tanisha, आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर. एंड शान और सुनिधि चौहान की आवाज में सुना आपने, आदत हो चुकी है तेरी, अच्छी बातें हो ही जानी चाहिए, यही गोल था मेरा. जी हाँ, वेल एक बार फिर से याद दिला रही हूँ, बैक टू स्कूल के रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं. अ डे फिल्ड विथ फन, लाफ्टर, गेम्स, चैलेंजेस, बहुत मजा आने वाला है. और इसमें अगर आप अपने बच्चे को पार्टिसिपेट करवाना चाहते हैं तो रजिस्टर कर लीजिए जल्दी से उन्हें. olive.qa, दैट इज आर वेबसाइट. आप वहां जाएंगे, आपको बैक टू स्कूल का बैनर नजर आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म ओपन हो जाएगा. उस फॉर्म को फिल कर दीजिए एंड दैट्स इट, ऑल डन मेरी जन. बहुत लिमिटेड स्लॉट्स हैं, जल्द ही रजिस्ट्रेशन जो है वो क्लोज होने वाले हैं. सो प्लीज़ फटाफट से जाइए, रजिस्टर कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो. एंड टेल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑल्सो कि भाई कर लो, वक्त निकलता जा रहा है, कितना इंतजार करना है. एंड गेट रेडी, ऑन 27th of August हम मिल रहे हैं अबू सिद्रा मॉल में 3 to 7 PM. olive.qa इज द वेबसाइट टू रजिस्टर, एक बार फिर से याद दिला रही हूँ.
2: Venue partner, Abu Sidra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sidra Mall, a complete family destination.
3: Gifting partner, Daiso Japan. You name it, we have it.
2: And
3: Doha Center, shop more, pay less.
2: Old Airport Road, Doha and Alcor.
3: Call 70222525.
2: Creative partner, Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
4: Pizza partner, Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
2: Refreshment partner, Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding.

0: रेडियो ऑलिव पे स्टोरी ऑफ द डे स्टोरी ऑफ
1: द डे। एक बास का बच्चा मुर्गियों के साथ बड़ा हुआ तो पूरी जिंदगी जमीन पे गुजार दी, क्योंकि उसे लगता था वो उड़ नहीं सकता। एक दिन असली बास ने उसे देखा और बोला, तुम मुर्गी नहीं आसमान के बादशाह हो। उसने डरते डरते पंख खोले, एक लंबी छलांग लगाई और पहले ही बार में डर को हरा कर आसमान की बुलंदियों पर छा गया। अगर आप भी हालात से डर कर रुक गए हैं तो आज लोगों की परवाह किए बिना अपने पंख फैलाइए और एक लंबी छलांग लगाइए। आप आसमान के लिए बने हैं, जमीन के लिए नहीं। बस हार नहीं माननी है।

0: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
1: ओह नो, फिर से स्कूल.
2: अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है. रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश. अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक. वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल. किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है. तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है. अभी जाओ olive.qa पर, बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है. स्पॉट्स लिमिटेड है तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर. मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में. वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल. अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन.
3: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट.
2: एंड
3: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
2: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर.
3: कॉल 7022525.
2: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव. फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स Gulf on Instagram.
4: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
2: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding at the

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: तनिषा।
1: You're listening to Radio 106.3 FM, Tanisha आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर। ओए बॉय चार्ली इन द वॉइस ऑफ रेखा भारद्वाज एंड मोहित चौहान। सुना आपने मटरू की बिजली का मंडोला मूवी से? भाई ये तो टंग ट्विस्टर ही हो गया है। वेल एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज आपसे शेयर करना चाहूंगी। सो वी नो वैन्स राइट, नॉट द वैन चलाने वाला, नो नॉट द व्हीकल, द शू ब्रांड। यस, सो वैन्स का जो सबसे पहला स्टोर खुला था 1966 में, अभी कैलिफोर्निया में खुला था ये स्टोर। एंड जो पॉल वैन डॉरिन है जो कि फाउंडर ओनर है उसके स्टोर के, ही फॉरगॉट टू पुट कैश इन द रजिस्टर द फर्स्ट डे ओनली। ओके, क्योंकि चेंज देना होता है लोगों को एंड ऑल, सो वो भूल गए, नहीं रख पाए। नाउ इफ समबडी इज कमिंग विद अ बिगर बिल, ही इज नॉट एबल टू रिटर्न देम द चेंज। सो व्हाट ही डिड, ही टोल्ड ऑल द कस्टमर्स हु केम दैट डे कि आप जाइए, आप बाद में आकर मुझे चेंज दे दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। ही जस्ट यू नो ट्रस्टेड देम एंड ही शोड फुल ट्रस्ट इन देम। एंड गेस व्हाट, ईच वन ऑफ देम, जितने भी लोग वहां से शूज लेकर गए फर्स्ट डे पर एंड हु कुड नॉट पे बिकॉज ऑफ द बिगर बिल्स, वो नेक्स्ट डे वापस आए उन्हें प्रॉपर अमाउंट देने के लिए टू पे फॉर देयर शूज। एंड दैट इज सच अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ ट्रस्ट, यू नो, कि वेन यू पुट योर ट्रस्ट इन समबडी एंड यू शो देम कि मुझे भरोसा है तुम कर लोगे, वो कर देते हैं यार। सो वही ट्रस्ट हमें अपने अंदर भी शो करना है, समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ जी। एंड स्टे ट्यून्ड टू रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास।
0: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश है, ये गाना फ्रेश है, फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर, ये गाना।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओपनिंग ऑन 19th August इवनिंग ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा। द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर। बी रेडी टू

0: दस मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड इट टुडे

0: की शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
1: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
0: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
1: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओपनिंग ऑन 19th अगस्त इवनिंग ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा। द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर, बी रेडी टू शॉप।
2: Hi everyone, मैं हूँ अरमान मलिक।
3: अरमान मलिक
2: 106.3 FM Radio Olive, Jio Bindas.
4: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian Radio Network.
5: Radio Olive, I'm number one. Abu Hogi, Abu Hogi, Bindas Morning.
6: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
7: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

0: सुखविंदर सिंह और ऋतु शर्मा की आवाज में ताल मूवी से नहीं मैं समझ गई, बहुत ही कमाल का गाना ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम। तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर एंड आई एम गेटिंग मैसेजेस ओवर हियर कि बैक टू स्कूल के लिए रजिस्टर करना है कैसे करें। मैं बता देती हूँ, बहुत सिंपल है, आपने जाना है olive.qa पर, दैट इज़ आर वेबसाइट। ओके, उस वेबसाइट पर जाकर आप बैक टू स्कूल का जो बैनर है उस पर क्लिक करेंगे, वहाँ से वो फॉर्म ओपन हो जाएगा, आपने बस वो फॉर्म भर देना है एंड फिलिंग अप दैट फॉर्म इज़ एज गुड एज कॉन्फर्मेशन। ठीक है, 27 अगस्त को ये इवेंट होने वाला है अबू सिद्रा मॉल में, दोपहर 3 से शाम 7 बजे तक। बहुत सारे अमेजिंग गेम्स प्लान्ड है बच्चों के लिए, यू नो फन चैलेंजेस होंगे और बहुत सारी मस्ती होगी। स्कूल वाले रूटीन में दोबारा लौटने से पहले ये फन तो बनता है मेरी जान, सो डू नॉट मिस दिस आउट। अपने बच्चों को रजिस्टर करो, अपने आसपास लोगों को भी बता दो कि भैया ये हो रहा है 27 को अबू सिद्रा में, olive.qa पर जाकर रजिस्टर कर लो फटाफट से। जी हाँ, एंड अगर फिर भी मुश्किल हो रही है वेबसाइट ढूंढने में तो मुझे मैसेज कर दो 3311063 पर, आई विल शेयर द वेबसाइट विद यू एंड यू कैन रजिस्टर देयर।
1: वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
2: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
1: एंड
2: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
1: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
2: कॉल 7022525।
1: क्रिएटिव पार्टनर, प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स Gulf on Instagram.
3: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
1: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अब उसिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है, तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है। अभी जाओ olive.qa पर बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है। स्पॉट्स लिमिटेड है, तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर। मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में। वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
2: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
1: एंड
2: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
1: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
2: कॉल 7022525।
1: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स Gulf on Instagram.
3: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
1: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding.

0: तनिषा
1: आशा था कि आज में मेरे यार की शादी है मूवी से शरारा शरारा ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर और रिमाइंडर देने आई हूँ जी आपको इफ यू हैवंट फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया राइट अवे radioolive.qa इज द हैंडल फॉर इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब स्नैपचैट टिकटॉक सब जगह फॉलो कर लीजिए क्योंकि वी कीप पोस्टिंग थिंग्स वी कीप पोस्टिंग इट फॉर यू सो आप तक चीज़ें पहुँचनी चाहिए कॉन्टेस्ट वगैरह भी चल रहे होते हैं वहाँ पर तो उसमें भी पार्टिसिपेट कीजिए यू नेवर नो यू माइट विन समथिंग एक्साइटिंग यस अलॉन्ग विद दैट बैक टू स्कूल के लिए फटाफट से अपने बच्चों को रजिस्टर कर लो और कल कतर में कुछ नया आ रहा है जी हाँ सब बात कर रहे हैं उसके बारे में एंड फाइनली इट इज ओपनिंग टुमारो अब वो क्या है वो कल ही पता चलेगा अभी कैसे बता दूं सरप्राइज एलिमेंट किल हो जाएगा ना जी तो बस टू नो मोर स्टे ट्यून्ड टू रेडियो ऑलिव जियो बिंदास

0: सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
1: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
0: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
1: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओपनिंग ऑन 19th August इवनिंग, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा। द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर, बी रेडी टू

0: हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क

0: दनिशा
1: श्रेया घोषाल की आवाज में चका चक फ्रॉम द मूवी अतरंगी रे तनिशा के साथ हैं आप रेडियो 106.3 एफएम पर बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर और वक्त हो चुका है मेरी जानी का मेरी जान मिलते हैं कल सुबह 6 बजे वेंसडे का दिन है खुशी और भी बढ़ जाएगी क्योंकि वीकेंड और नजदीक हो जाएगा यस बाकी आप अपना ख्याल रखें हैव एन अमेजिंग डे टू योर सेल्फ छोटी मोटी बातों पर ज्यादा गौर फरमाने की जरूरत नहीं है ठीक है इग्नोर कर सकते हैं और रिमेंबर जब भी गुस्सा आए 6 सेकंड का पॉज इज मैंडेटरी ये मैं खुद को भी रिमाइंड करवा रही हूँ बेसिकली और बाकी सब सही है स्टे हाइड्रेटेड अपना ख्याल रखें आप बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को कभी भी ना भूलें बाकी रेडियो ऑलिव है आपके साथ पूरा दिन आपकी इस जर्नी में एंड बढ़िया बढ़िया गाने चला रहे हैं अभी कशिश आती होगी आपकी लाइफ को और भी मस्त बनाने के लिए तो सब सॉर्टेड है यार चिल रहने का स्ट्रेस नहीं लेने का ठीक है सुन रही है रेडियो ऑलिव 106.3 FM चियो बिंदास मेरी जान

किसी फेरी टेल से कम नहीं है ये गाना। मतलब अगर बॉलीवुड की कोई फेरी टेल बन रही होती तो उसमें बैकग्राउंड में यही गाना होता। देखो मैं तो बोल रही हूँ, आपको अगर कोई और गाना ऐसा लगता है तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। वेलकम जी, 106.3 रेडियो ऑलिफ बेर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखिए यार, आज का जो दिन है वो काफ़ी ही स्पेशल होने वाला है हर दिन की तरह, क्योंकि देखो जब आप और मैं बात कर रहे होते हैं तो दिन अपने आप स्पेशल बन जाता है, और ये स्पेशल दिन हर रोज़ आता है। तो मेरे दिन को थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेशल बना दो अपने प्यारे प्यारे मैसेजेस के साथ। फ़ोन उठाओ, नंबर घुमाओ नहीं मतलब लगाओ, 3311063 ये मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर है, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, कुछ भी बोल दो, और अगर मेरी थोड़ी सी तारीफ कर दोगे तो और अच्छा लग जाएगा। बाकी आज लाइफ मस्त शो में कुछ अमेजिंग बातचीत होने वाली है, जैसे कि हम रोज़ ही करते हैं, लेकिन आपकी स्ट्रेस को दूर भगाएंगे, बॉलीवुड की बातचीत करेंगे, फैशन में क्या चल रहा है उस पर भी बात करेंगे, एंड जेन जीज की आखिर प्रॉब्लम क्या है इस पर भी बात करेंगे। मैं खुद जेन जी हूँ लेकिन जेन जीज की प्रॉब्लम को एड्रेस ज़रूर करूँगी। फिलहाल आवारापन 2 से एक बहुत ही अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, वॉल्यूम बढ़ाओ, इन्जॉय करो। बाकी बातचीत जो है वो तो हम करते ही रहेंगे, मैसेजेस आने शुरू हो गए, आप किसका वेट कर रहे हो? 3311063 इज द नंबर, जल्दी से मैसेज कर दो। मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी सी देर में, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है। इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 10:13, दैट इज 10:13। स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास।
2: सुनो सुनो सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
3: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
2: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
3: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओपनिंग ऑन 19th अगस्त इवनिंग, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा। द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर, बी रेडी टू शॉप।
4: हाय एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक, 106.3 FM रेडियो ओलिव जियो बिंदास।

0: ये वाइब वाला गाना शुभ मंगल ज्यादा सावधान से आया आपके रेडियो सेट्स पर। मैं हूँ आपकी कसुशन, शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए यार, लाइफ में सारी चीजें वो कहते हैं ना, फॉल ऑन प्लेस हो सकती हैं, लेकिन ये मौसम नहीं हो पा रहा है। मतलब मैं इस दुनिया में इस वक्त और किसी चीज से इतनी परेशान नहीं हूँ जितनी ह्यूमिडिटी से परेशान हूँ। मतलब मुझे पूरे टाइम मूड खराब लगता है अपना जैसे ही मैं बाहर कदम रखती हूँ। वो तो अच्छी बात है कि कतर में जो है हर थोड़े दूर पे जो है एसी आपको मिल जाता है, आपको रोड्स पे एसी मिल जाता है, आपको पार्क में एसी मिल जाता है, गार्डन एसी मिल जाता है, वरना मेरा मूड इतना खराब रहता है ना कि मैं मस्त खुशी खुशी सबसे बात कर रही होती हूँ ऑफिस में, और जैसे ही ऑफिस के गेट के बाहर कदम जो है वो मैं रखती हूँ, मुझे चिड़चिड़ होनी शुरू हो जाती है, मैं लोगों को डांट देती हूँ, मैंने अपने कलीग्स को कुछ भी बोल दिया भाई, एंड उसके बाद फिर उसके रिपरकशंस भी सहने पड़ते हैं क्योंकि उनको तो याद रहता है, वो लोग ऑफिस के अंदर आने के बाद भी मुझसे फिर वैसे ही बिहेव करते हैं। मौसम तो खैर बहुत जो अलग अलग लेवल्स पे हमारा मूड खराब कर रहा है, लेकिन फिलहाल टेम्परेचर क्या रहने वाला है आज वो जान लेते हैं। तो पिछले कुछ दिनों से 42 डिग्री सेल्सियस 41 डिग्री सेल्सियस रह रहा था टेम्परेचर, लेकिन आज 39 डिग्री सेल्सियस पे आ गया है इस वक्त करंट टेम्परेचर दोहा में, एंड आज का हाईएस्ट टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, आज का लोएस्ट टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। एटलीस्ट देखो मेरा गूगल तो मुझे यही बता रहा है। अब अगर आपको ऐसा लगे कशिश 39 से तो ज़्यादा लग रहा है, हम तो अभी बाहर ही हैं, तो ये ना ह्यूमिडिटी की वजह से हो रहा है। तो अगर आप रोड पर हैं और आपका जो डिवाइस है वो ज़्यादा टेम्परेचर बता रहा है, तो क्योंकि आपके इन्वायरमेंट के हिसाब से, आपके आसपास के सिचुएशन के हिसाब से वो टेम्परेचर बढ़ता और कम होता रहता है, सो ह्यूमिडिटी की वजह से आपको टेम्परेचर और ज़्यादा लगेगा। इससे बचने का बस एक ही तरीका है कि आप पानी पीते रहें, सनस्क्रीन लगाते रहें, और जितना हो सके उतना अंदर रहें, घर के, ऑफिस के, कार्स के, मॉल्स के, जहाँ आपको जाना है वहाँ पे फिलहाल। और एक और तरीका है कूल सॉन्ग ऑफ द आर सुनने का। सो हीट को बीच करते हैं म्यूजिकल बीट्स के साथ, कूल सॉन्ग ऑफ द आर आपको थोड़ा सा कूल सा फील कराएगा। सो ये गाना इंजॉय करके जरा वापस आओ, उसके बाद जो मैसेजेस आपको सुनाई दे रही होंगी आ रहे हैं। असमा जी ने मुझे मैसेज कर दिया है, यूसुफ जी ने मैसेज कर दिया है, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज करके रखा है, वो सारे मैसेजेस पढ़ेंगे हम थोड़ी सी देर में। फिलहाल आप जल्दी से जाओ, ये गाना इंजॉय करके आओ। 3311063 इज माई नंबर, आप भी चाहे तो मैसेज कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ थोड़ी सी देर में, स्टे ट्यून्ड रहिए जियो बिंदास।
1: Awesome. Radio Olive पर आने वाला गाना Cool Song of the Hour.
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद

लाइफ मस्त नाम दे दो यार, मुझे लगता है इस प्यार को यही नाम देना चाहिए क्योंकि यही तो है जो आपको और मुझे जोड़ता है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल ओवर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है। एंड आप लोगों का प्यार जो है वो बिल्कुल भी कम नहीं पड़ रहा है मेरे लिए। कोई मुझे जो है बड़ी बहन समझ रहा है, कोई मुझे छोटी बहन समझ रहा है, कोई मुझे बहुत छोटा बच्चा समझ रहा है, एंड मुझे ही बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज मैं हमेशा से, जब से मैंने काम करना शुरू किया है, मैं जिस भी जगह जाती हूँ मैं उस जगह सबसे छोटी रहती हूँ उम्र में, एंड मुझे ना उस वजह से काफ़ी प्यार मिलता है, एंड वही प्यार मुझे यहाँ पर भी मिल रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड बात करते हैं मैसेजेस की, तो लियाकत जी ने मुझे गुड मॉर्निंग कहा है। मोहम्मद यूसुफ खान जी ने जो है उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सा मैसेज लिखा है, जैसे वो हर रोज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम यूसुफ जी। गुड मॉर्निंग कशिश, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड आज आपने फिर से मुझे, वेंसडे है तो आज क्या है, आज ट्यूसडे है, ये आपने याद दिलाया है, थैंक यू सो मच। देखिए मुझे दिन याद नहीं रहता, सिर्फ आपके वजह से मुझे जो है डेज याद रहते हैं वीक के। एंड इन्होंने एक बहुत प्यारा सा मैसेज भी मेरे लिए लिखा है कि कशिश आप यू आर वेरी एनर्जेटिक एंड इंथुजियास्टिक, आपको सुन के अच्छा लगता है, यू आर जेन ज़ी बट हैविंग मिलेनियल एक्सपीरियंसेस। अल्लाह सदा खुश रहे, थैंक यू सो मच। आपकी बस इसी दुआ की दरकार थी हमें, थैंक यू सो मच। यस जेन ज़ी हूँ मैं, लेकिन एक मिलेनियल प्रोस्पेक्टिव के साथ। बात कर लेते हैं अस्मा जी की, गुड मॉर्निंग उन्होंने लिखा है, और उन्होंने लिखा है आई हैव अ फीलिंग टुडे इज गोइंग टू बी अ ग्रेट डे, गेट रेडी टू टेक ऑन द डे। बिल्कुल जी, आपने मैसेज कर दिया है, अब मेरा दिन बढ़िया ही जाएगा। एंड मैंने जैसे आप लोगों को कहा था कि कुछ भी मैसेज कर दूँ मुझे, हाय हेलो गुड मॉर्निंग, तो मुझे जो है सर ने एक, उनका नाम मुझे यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, लेकिन उन्होंने लिखा है हाय हेलो गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। इतनी बात तो मेरी छोटे भाई ने भी नहीं मानी मेरी कभी, जितनी आप मेरी मान लेते हैं, सो थैंक यू सो मच। बाकी एक बहुत ही अमेजिंग वाली चीज़ पे हम बातचीत करने वाले हैं। अगर आप बॉलीवुड के फ़ैन हैं, स्पेशली जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसके बारे में एक बात जो है वो हम करने वाले हैं थोड़ी सी देर में। फिलहाल चुप चुप के गाना जो है आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, इसे एंजॉय कीजिए। आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: ऑलिव पे स्टोरी ऑफ द डे स्टोरी ऑफ द डे।
1: एक बास का बच्चा मुर्गियों के साथ बड़ा हुआ तो पूरी जिंदगी जमीन पे गुजार दी, क्योंकि उसे लगता था वो उड़ नहीं सकता। एक दिन असली बाज ने उसे देखा और बोला, तुम मुर्गी नहीं आसमान के बादशाह हो। उसने डरते डरते पंख खोले, एक लंबी छलांग लगाई और पहले ही बार में डर को हरा कर आसमान की बुलंदियों पर छा गया। अगर आप भी हालात से डर कर रुक गए हैं तो आज लोगों की परवाह किए बिना अपने पंख फैलाइए और एक लंबी छलांग लगाइए। आप आसमान के लिए बने हैं, जमीन के लिए नहीं। बस हार नहीं माननी है।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओपनिंग ऑन 19th August इवनिंग ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा। द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर। बी रेडी टू

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: In association with
2: Nesto Hypermarket, now opening on 19th August, Old Passport

यहाँ पर गोल रोटी बनानी नहीं आ पा रही है, लेकिन आशिकी फुल आ रही है। क्योंकि देखो रोटी बनाना जो है, कोई आपको इंस्टाग्राम पर नहीं सिखाता, लेकिन हर कोने से एक ना एक इंसान उठ के आ जाता है आपको आशिकी करना सिखाने के लिए। लेकिन देखो रोटी बनाना ही काम आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर अकेली रह रही हूँ। एंड आपको लगता है कि आप ऑर्डर करके या आप चावल खा के गुजारा कर सकते हो, लेकिन नहीं, जिस तरीके से हम देसी फैमिलीज में बड़े हुए हैं, रोटी के बिना जो है ज़्यादा दिन रहा नहीं जा सकता। वेलकम टू 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश, एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखो यार, एक फैक्ट तो आपको पता है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये पहले से हमें पता था, लेकिन मूवी आने के बाद यानी ZNMD जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, यानी फरहान अख्तर, ऋतिक रोशन एंड अभय देओल की जो अमेजिंग वाली मूवी थी, जो जोया अख्तर ने हमें ऐसे परोसी थी, जिसके बाद बॉयज ट्रिप का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया, उसके बाद स्पेन का टूरिज्म जो है वो एकदम स्पाइक कर गया, टोमाटीना फेस्टिवल जो है वो हमारी टू डू लिस्ट में आ गया, उस मूवी का जो है मतलब पार्ट टू बनाने की बातचीत काफ़ी लंबे टाइम से चल रही है, लेकिन रिसेंटली जोया अख्तर जो है एक हॉलीवुड फिल्म फेस्टिवल में बैठी थी एंड उनसे पूछा कि यार ZNMD कब हमें देखने मिल सकती है, एंड उन्होंने कहा कि यार देखो काम स्क्रिप्ट पे जारी है एंड हम उन्हीं तीनों कैरेक्टर्स की स्टोरी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, तो जितने भी ZNMD फैंस हैं उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होने वाली है अब देखो। पर देखो यार एक बात ये भी है कि अभी रिसेंटली ही 15 साल पूरे हुए हैं ZNMD को जुलाई में, एंड तब जो है काफ़ी सारे ब्रांड्स ने जो है कोलैबोरेट किया जोया अख्तर के साथ, एंड ऑफिशियल मर्च यानी ऑफिशियल टी शर्ट्स, बैकपैक्स और ये सब जो है वो लॉन्च किए ZNMD के। थोड़े से ज़्यादा प्राइसी हैं, मतलब एक टी शर्ट के हिसाब से थोड़े ज़्यादा प्राइसी हैं, लेकिन जो कोर हार्ड कोर ZNMD फैंस हैं वो इसके पीछे भी काफ़ी यू नो ऐसे हार्ड कोर हो रहे हैं कि हम कलेक्ट कर लेंगे पोस्ट कार्ड्स। सोचो इंस्टाग्राम के ज़माने में पोस्ट कार्ड कलेक्ट करने के लिए जो है बिल्कुल तैयार हैं लोग। आप ZNMD फैन है या नहीं है ये मुझे बताइए 3311063 पर मैसेज करके। बाकी बहुत सारी अमेजिंग बातचीत जो है वो अभी हम करने वाले हैं, एंड वेलकम टू द जंगल से एक अमेजिंग वाला गाना भी मैं आपको सुनाने वाली हूँ। तो काम आपको बस सिंपल सा करना है, वॉल्यूम बढ़ाना है, अमेजिंग वाले गाने जो है वो इंजॉय करते रहने, और आपकी कशिश के साथ कहते रहना जियो बिंदास। तो ये गाने इंजॉय करके आओ, मिलते हैं थोड़ी सी देर में।

0: Check. Time check. Brought to you by Nanatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souk Waqif Alkhol.
1: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चुका है. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे 11:09. दैट इज 11:09. स्टे ट्यून्ड जी विद अस.
0: फ्रेश फिश ऑन द ग्रिल, स्लो कुक्ड मंडी, परफेक्टली स्पाइस्ड प्रॉन्स एंड दैट स्पेशल चटनी. नो नॉइस, नो ड्रामा, जस्ट सी फूड डन राइट. बीबीक्यू फिश, क्रैब्स, प्रॉन्स क्राफ्टेड विद पेशेंस, सर्व विद प्राइड. नानातल पहाड़, द अल्टीमेट कतरी एडवेंचर. सुख वाकिफ अलखोर.
2: सलाम, प्रणाम, नमस्कार, वणक्कम. मैं हूँ शाकी श्रॉफ. रेडियो ऑलिव, बोलो बिंदास.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: With Nesto Hypermarket, now opening on 19th August, Old Passport

0: कुछ गाने ऐसे होते हैं जिसमें से ना 90s की खुशबू आती है. सो ये उन्हीं गानों में से एक गाना आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो पर. मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ मैं लाइफ मस्त है, जो आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की देखो मैं कोशिश कर रही हूँ. अब देखो आज ना एक बहुत ही स्पेशल वाला दिन है और उस स्पेशल वाले दिन का नाम है नेवर गिव अप डे. यानी आज के दिन हम आपकी नेवर गिव अप वाली स्पिरिट को जो है सेलिब्रेट करते हैं. एंड बस इसी के चलते मैं आप लोगों से आपकी स्टोरीज जानना चाहती हूँ, आपके एक्सपीरियंसेस जानना चाहती हूँ कि कब आपने किस चीज़ पे गिव अप नहीं किया, आपने सोचा कि भाई आज तो जो है मैं करके रहूंगा, या मैं जनरली एक आदत जो है वो मेंटेन करके रहूंगा, या कोई आदत जो बुरी है उसे छोड़ के रहूंगा, या कुछ अपने सपने हैं वो अचीव करके रहूंगा, एंड आपने गिव अप नहीं किया. छोटी छोटी बातों पे भी हो सकता है यार, हो सकता है कि आपसे घर पे एक रेसिपी ना बन रही हो लेकिन आपने उसे बार बार कोशिश करी एंड वो बन गई. सो ऐसे कौन सी चीजें हैं जिसपे आपने नेवर गिव अप एटीट्यूड जो है वो दिखाया है एंड वो काम किया है. स्टोरीज जो है आपकी बहुत बहुत वेलकम है, आपके एक्सपीरियंस बहुत बहुत वेलकम है. जल्दी से ऑडियो नोट भेज दीजिए, मैसेज टाइप करके भेज दीजिए मुझे व्हाट्सएप पे. 3311063 इज माई नंबर, व्हाट्सएप वाला नंबर है, जल्दी से मैसेज कर दो. एंड क्या होगा ना कि आपकी इन स्टोरीज से मैं तो इंस्पायर होंगी लेकिन साथ में बाकी लोग भी इंस्पायर होंगे, ताकि हम नेक्स्ट नेवर गिव अप डे तक हम किसी और को ये स्टोरी सुना सके कि यार मैंने ना रेडियो पे एक इंसान की कहानी सुनी थी जिसने गिव अप नहीं किया एंड उसके बाद मैंने भी गिव अप नहीं किया. सो जल्दी से मेरी और दूसरों की हेल्प कर दीजिए. 3311063 पर शेयर कर दीजिए कि किस तरीके से आपने गिव अप नहीं किया. एंड बस आपको गिव अप करने पे मजबूर करने वाले लोगों के लिए एक गाना जो है मैं यहाँ पर प्ले कर रही हूँ. सो ये गाना उन लोगों के नाम है जो लोग आपको रोकते हैं, जो ये कहते हैं कि आप नहीं कर सकते. आप सब कुछ कर सकते हैं यार, बस आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए. तो फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द आरआरएफ के रेडियो सेट्स पर आप मुझे मैसेज कर दीजिए 3311063 पर. फिलहाल तो ढिशुम गाना एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो बिंदास.
1: कूल सॉन्ग रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है. कूल सॉन्ग.
0: हर उस इंसान को बोलो तो ढिशुम, हर उस चीज को बोलो तो ढिशुम जो आपको गिव अप करने में मजबूर कर रही है. मैं हूँ आपकी कशिश जियो बिंदास.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपनिंग ऑन 19th August, ओल्ड पास

ये नेवर गिव अप वाले एटीट्यूड में ऐसा जादू है ना कि काम अपने आप हो ही जाता है। वेलकम टू 106.3 रेडियो ओलिवर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखिए, आप लोगों से मैंने आप सबके यू नो नेवर गिव अप वाले एक्सपीरियंसेस तो पूछे ही थे, क्योंकि आज नेवर गिव अप डे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम। लेकिन कुछ ऐसे नामचीन लोग होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं, जो हमें इंस्पायर करते हैं कि कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। कुछ लाइव एग्जाम्पल्स होते हैं जो अभी हम देख सकते हैं हमारी आंखों के सामने उन्हें बड़ा बनते हुए, क्योंकि उनका गिव अप एटीट्यूड जो है वो कभी खत्म नहीं होता। और एक ऐसे ही यू नो नामचीन चेहरे से मैंने बातचीत की थी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी से मेरी बात हुई थी एक बार, मैंने उनका इंटरव्यू किया था एंड तब मैंने उनसे उनकी लाइफ की स्ट्रगल्स के बारे में पूछा था कि नवाजुद्दीन जी आप मुझे बताइए कि आपने शुरुआत कैसे की। तो उन्होंने मुझे बताया था कि यूपी के एक छोटे से गाँव से थे वो एंड उनके 9 भाई बहन थे एंड उनकी पढ़ाई एंड सब जो है वो बहुत मुश्किल हो रहा था, फाइनेंशियल बहुत यू नो हार्डशिप्स उन्हें देखने को मिले एंड 1-2 साल तो उन्हें जो है सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़ी एंड उनका कोई राबता नहीं था, कोई नाता नहीं था एक्टिंग से। लेकिन फिर वो जो है NSDI यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो इंडिया में है, वहाँ पर उन्होंने अपना डिप्लोमा किया, वहाँ पे उन्होंने शुरू किया पढ़ाई करना एंड उन्होंने काफ़ी सारे रिजेक्शंस जो हैं वो सहे, उन्होंने जूनियर आर्टिस्ट के रोल किए, उन्होंने बिना पैसों के काम किया एंड उन्होंने ये कहा था कि अगर मुझे जो है कहीं भी रोल नहीं मिलता है, अगर मुझे कहीं भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, मैं स्ट्रीट प्ले करूंगा, मैं फ्री में काम करूंगा, लेकिन मैं कभी कोशिश करना ख़त्म नहीं करूंगा। पता नहीं वो एक कौन सी अदा जो है मेरी ऊपर वाले को पसंद आ जाए जिसके बाद मुझे जो है काम मिल जाए। बस इस नेवर गिव अप एटीट्यूड के बाद जो है उन्हें अनुराग कश्यप की एक मूवी में बहुत बड़ा ब्रेक मिला 2012 में एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। हम नवाजुद्दीन सिद्दीकी को एक्टिंग का बेहतरीन एक्टिंग का सिनोनिम भी कह सकते हैं। सो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तरह ही आपकी लाइफ में भी हार्डशिप्स होंगी, लेकिन आप अगर नेवर गिव अप एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ेंगे तो बिल्कुल जो है सब कुछ पूरा हो जाएगा। एंड देखो यार, किसी की कहानी ना छोटी, किसी की कहानी बड़ी नहीं होती है, सबकी कहानी उनके लिए इंपॉर्टेंट होती है। सो बस आपकी उस कहानी में मैं काफी इंटरेस्टेड हूं, तो आप दिल खोल के अपनी कहानी मुझे सुनाइए। और अगर आप ये कहेंगी कशिश किसी को बताना मत, तो नहीं बताऊंगी यार, मुझ तक रखूंगी, लेकिन बताइए तो सही। 3311063 ये मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर है, इस पर आप जो है मुझे मैसेज करके अपनी कहानी बता सकते हैं। फिलहाल एक अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर तोशी रैना की आवाज में और अरिजीत सिंह की आवाज में, इसे एंजॉय करके आइए, उसके बाद बातचीत जो है वो जारी रखेंगे। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

the day. Story of the day. बास का बच्चा मुर्गियों के साथ बड़ा हुआ तो पूरी जिंदगी जमीन पे गुजार दी, क्योंकि उसे लगता था वो उड़ नहीं सकता। एक दिन असली बाज ने उसे देखा और बोला, तुम मुर्गी नहीं आसमान के बादशाह हो। उसने डरते डरते पंख खोले, एक लंबी छलांग लगाई और पहले ही बार में डर को हरा कर आसमान की बुलंदियों पर छा गया। अगर आप भी हालात से डर कर रुक गए हैं तो आज लोगों की परवाह किए बिना अपने पंख फैलाइए और एक लंबी छलांग लगाइए। आप आसमान के लिए बने हैं, जमीन के लिए नहीं। बस हार नहीं माननी है।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: With Nesto Hypermarket, now opening on 19th August, Old Passport Office, Karafa.
2: रानी, देख राजा ये मटकी एक फटकी में तोड़ता है।

0: जर्सी मूवी का ये ट्रैक था आपके रेडियो सेट पर, एंजॉय किया आपने 106.3 रेडियो एफएम। मैं हूँ आपकी कसम सेंसो, आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त, जो आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखो यार, हर रोज शो में हम फैशन में क्या कुछ इन ट्रेंड है उसकी बात करते हैं, लेकिन एक चीज जो काफी एस्थेटिकली प्लीजिंग होती जा रही है एंड अननेसेसरी की महंगी होती जा रही है, वो है मग्स। जी हाँ, मग्स जिसमें आप चाय, कॉफी, माचा, लस्सी जो चाहे वो पी सकते हैं, उनमें अब ये जो चीजें हैं इन्हें पीने के बजाय इन्हें एज अ फैशन एक्सेसरी यूज किया जा रहा है। लोग स्पेशली अपने सेरेमिक मग्स जो है उन्हें लेकर रास्तों पे निकल पड़े हैं, अपने आउटफिट के साथ मैच कर रहे हैं, उसकी सेल्फीज डाल रहे हैं, उसके इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डाल रहे हैं। एंड अब बेसिकली कप मग जो है वो एक यूटेंसिल से बढ़कर जो है एक एक्सेसरी के तौर पर जो है अब ज्यादा बढ़ गया है। सो अगर आप अभी भी वो व्हाइट वाले फूल वाले कप यूज कर रहे हैं, मग्स यूज कर रहे हैं, तो उन्हें हटा दीजिए एंड जल्दी से कोई फंकी क्वर्की सा मग ले आइए एंड उसके साथ स्टोरी पोस्ट कर दीजिए, आप इन ट्रेंड लगने लग जाएंगे। देखिए बस इतना सा करना है, और ऑलरेडी कोई एस्थेटिक सा क्यूट सा कप मग आपके पास है तो मुझे फोटो भेज दीजिए जल्दी से 3311063 पर। फिलहाल अमेजिंग गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, एंजॉय कीजिए और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर Song of the Hour. Yeah, guys.

0: स्कूल।
1: अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है। तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है। अभी जाओ olive.qa पर बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है। स्पॉट्स लिमिटेड है तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर। मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में। वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
2: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
1: एंड
2: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
1: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
2: कॉल 7022525।
1: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स गल्फ ऑन इंस्टाग्राम।
3: पिज्जा पार्टनर पापा जॉन्स, ऑर्डर अर्न रिपीट विद पापा रिवॉर्ड्स। डाउनलोड पापा जॉन्स ऐप एंड एंजॉय मोर रिवॉर्ड्स।
1: रिफ्रेशमेंट पार्टनर अल वाजबा डेयरी एंड अल शमाल प्योर ड्रिंकिंग वाटर, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय गल्फ सेंटर होल्डिंग एट द हार्ट।

इसी गाने पे कोइंसिडेंस है, पता नहीं क्या हुआ कि कल ही मैंने इस गाने पे एक स्टोरी जो है वो पोस्ट करी है, उस पे लिखा है कि इतना फोन चलाती हूँ मैं कि एक दिन जो है रील रह जाएगी और मैं स्क्रॉल हो जाऊंगी। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशल। शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ मैं लाइफ मस्त, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब देखो यार, मैं ना आपसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात अक्सर करती रहती हूँ, लेकिन मूवीज़ के बारे में मुझे बात करना खैर बहुत ज़्यादा पसंद है। अब आपको ये तो पैटर्न अब समझ आ गया होगा बॉलीवुड का, जहाँ पर वो एक इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर को लेते हैं एंड एक अच्छी खासी स्टारकास्ट वाली मूवी में डाल देते हैं। अभी बहुत सारी मूवीज़ में हमने ऐसा देखा, माधुरी दीक्षित की एक मूवी आई थी, उसमें भी जो है धारणा एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है जिनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर्स की ऐसे होती नहीं है। सो मालामाल वीकली 2 जो है वो बन रही है, ये मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले, उसकी स्टार कास्ट जो है वो अब अनाउंस हो गई है एंड मालामाल वीकली के जितने भी अमेजिंग स्टार्स थे उनके साथ अब एक इन्फ्लुएंसर एल्विश भाई जो है, एल्विश यादव, उनको जो है डाल दिया गया है स्टार कास्ट में। अब मैं इसके लिए काफ़ी स्केप्टिकल हूँ कि यार पता नहीं ये अच्छी एक्टिंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एक इन्फ्लुएंसर है, व्लॉगर है भाई ये, मतलब ऐसे मतलब फनी एक्टिंग वाला कंटेंट भी क्रिएट नहीं करते हैं ये, व्लॉगिंग करते थे एंड उसके बाद इन्होंने कुछ रियलिटी शोज किए जिसमें जीते भी एंड उसके बाद जो है अब इन्हें मूवीज़ जो है वो करने का मौका मिल रहा है। मुझे नहीं पता, बट मैं जो है अपनी एक कल्ट क्लासिक मूवी का जो सीक्वल है वो बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहती। बाकी आपको क्या लगता है, ये जो बॉलीवुड ने नया कल्चर शुरू किया है जहाँ पर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को उठा के जो है मूवीज़ में कास्ट किया जा रहा है, क्या ये एक अच्छी चीज़ है? क्योंकि बड़ा स्क्रीन जो अच्छा कॉन्टेंट क्रिएट कर रहा है उन्हें एक बड़ा ऑप्शन मिल रहा है, यू नो उनके करियर को एक बड़ा बूम मिल रहा है अगर मैं मूवीज़ की बात करूं तो। लेकिन ब्लॉगर्स जिनका एक्टिंग से कोई दूर दूर का नाता नहीं है, बस उनकी ऑडियंस को पूल इन करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये सही है? बताइए मुझे आपका ओपिनियन क्या है। बाकी मालामाल वीकली और बॉलीवुड से जुड़ी हुई जो सारी खबरें हैं वो तो मैं आपको रोज़ आके बताती रहती हूँ। सो फिलहाल एक बहुत ही अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर, वॉल्यूम बढ़ाओ, इन्जॉय करो आपकी कशिश के साथ और कहते रहो जियो बिंदास।

0: सा मन भागे तेरे पीछे, बावरा सा मन, बावरा सा मन।
1: You are listening to Qatar's number one radio station, Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindaas.
2: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है। इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 12:11, दैट इज 12:11। स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास।
3: सुनो सुनो सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
4: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
3: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
4: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओपनिंग ऑन 19th अगस्त इवनिंग, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा। द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर, बी रेडी टू शॉप।
5: मैं हूँ विवेकानंद ओबरॉय एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव जियो बिंदास।

0: माय गॉड, मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई ये गाना। मतलब इस गाने को मैं लूप पे सुन सकती हूँ, पर आप लोगों को लूप पे सुनाऊंगी तो मुझे नहीं पता कि शायद आप लोग अगर बोर हो गए तो, इसीलिए एक ही बार सुना है। वेलकम जी 106.3 रेडियो और फिर मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जो यहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखो यार, मैंने आपको कल बताया था कि मेरे कुछ कजिन्स हैं जो कतर में रहते हैं, वो अपने बच्चों के साथ अभी समर वेकेशन मनाने के लिए इंडिया गए हुए थे एंड वो फाइनली आ चुके हैं एंड आज मैं उन लोगों से मिलने भी जा रही हूँ। एंड उन्होंने कहा था कि कशिश यार, जो तुमने तरीका बताया था बच्चों को यू नो स्कूल जाने से पहले एक बार फन जो है कराने का, वो बहुत ही अच्छा लगा। तो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं कि समर वेकेशन खत्म होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो है एक बार एक बैश जो है वो बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है बैक टू स्कूल बैश एट अबू सिद्रा मॉल इस 27 अगस्त को दोपहर 3 बजे से लेकर 7 बजे तक। यहाँ पर क्या होने वाला है आप पूछेंगे, यहाँ पे हो गए एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉन स्टॉप धमाल के साथ स्कूल से यू नो स्कूल जाने से पहले वाली एक पार्टी, जहां पर आपके बच्चे खुल के इंजॉय कर सकते हैं, फन कर सकते हैं। सो देखो, इसमें जो है एंट्री के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, आपको olive.qa पर जाना है एंड बैक टू स्कूल का वहां पे आपको फॉर्म दिखेगा, बस उसको जाके फिल कर देना है, दैट्स इट। देखिए बट इतनी सी छोटी सी प्रॉब्लम है, जो स्पॉट्स है ना वो लिमिटेड है, तो जल्दी से जाइए अपने बच्चों को इनरोल करा लीजिए, कुछ नहीं करना है। olive.qa की वेबसाइट पे जाइए, बैक टू स्कूल फॉर्म आपको दिखेगा, वहाँ पे बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है और वहाँ पे आप रजिस्टर हो जाएंगे। सो जल्दी जल्दी जाइए और जल्दी से जाकर अपने बच्चों को जो है इनरोल कर लीजिए, ताकि उनसे ये जो फन है ये मिस ना हो जाए, वरना वो हमेशा आपसे कंप्लेन ही करते रहेंगे।
1: Venue partner, Abu Sidra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sidra Mall, a complete family destination.
2: Gifting partner, Daiso Japan. You name it, we have it.
1: And
2: Doha Center, shop more, pay less.
1: Old Airport Road, Doha and Alcor.
2: Call 70222525.
1: Creative partner, Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
3: Pizza partner, Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
1: Refreshment partner, Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding.

0: तो जल्दी से आप एनरोल कर लीजिए एंड तब तक मैं आपको एक कूल सॉन्ग ऑफ द आवर जो है वो सुना देती हूँ. स्टे ट्यून रहो आपकी कशिश के साथ और कहते रहो जियो बिंदास.
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है.

0: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
1: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
0: योर स्पेशल ऑफर?
1: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
0: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
1: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपनिंग ऑन 19th August, ओल्ड पास

इफ आई एम नॉट रॉन्ग यही वो गाना है जिस गाने से यू नो हिमेश रेशमिया का वो वाली यू नो बात शुरू हुई थी कि ये जो है नाक से गाते हैं. जब जितनी भी मिमिक्री अब हिमेश रेशमिया की फिर होने लगी वो ऐसी है, तेरा तेरा तेरा सुरूर. वेलकम टू 106.3 रेडियो वाले पर मैं हूँ आपकी कशन शो आपके लिए लेकर आ गई लाइफ मस्ट, जहां पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं एटलीस्ट कोशिश कर रही हूँ. अब देखो यार, लाइफ मस्त तो तब हो जाएगी जब इंस्टाग्राम पर जो है बहुत सारे व्यूज और बहुत सारे लाइक्स आने लग जाएंगे अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर है तो. खैर अभी इंस्टाग्राम पे ना मैं एक नई चीज़ ये देख रही हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें स्टोरी फॉर्मेट पे आ रही हैं, मतलब आपकी फीड पर जो है काफ़ी सारी शॉर्ट स्टोरीज आ रही है, मतलब 5-6 एपिसोड में वो स्टोरी जो है वो कंप्लीट करते हैं रील्स के थ्रू. लेकिन काफ़ी कन्फ्यूजन जो है वो तब हो जाता है जब आपने एक एपिसोड तो देख लिया लेकिन अब आपको आगे क्या हुआ, इससे पहले क्या हुआ वो देखना है. तो आप उस क्रिएटर की जो है प्रोफाइल पे जाते हो एंड आप उसकी रील्स के बीच में ढूंढते रहते हो, गेट रेडी विद मी मिल रहा है, व्लॉग मिल रहा है, लेकिन इस स्टोरी के आगे और पीछे का कुछ नहीं मिल रहा है. सो अब इंस्टाग्राम ने एक फीचर जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया है जहाँ पर अगर ऐसी कोई सीरीज़ है सो उसे जो है अलग तरीके से हाईलाइट किया जा सकता है एंड सीरीज़ के तौर पर ही आप उसको जाकर देख सकते हो. सो ये क्रिएटर्स के लिए और व्यूअर्स के लिए दोनों के लिए ही बहुत ही अच्छा ऑप्शन जो है वो आने वाला है. बाकी एक बहुत ही अमेजिंग वाला गाना टेबल नंबर 21 का मन मेरा आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिए वॉल्यूम बढ़ाकर. मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: Olive Bay. Story of the day. Story of the day.
1: बास का बच्चा मुर्गियों के साथ बड़ा हुआ तो पूरी जिंदगी जमीन पे गुजार दी, क्योंकि उसे लगता था वो उड़ नहीं सकता। एक दिन असली बास ने उसे देखा और बोला, तुम मुर्गी नहीं आसमान के बादशाह हो। उसने डरते डरते पंख खोले, एक लंबी छलांग लगाई और पहले ही बार में डर को हरा कर आसमान की बुलंदियों पर छा गया। अगर आप भी हालात से डर कर रुक गए हैं तो आज लोगों की परवाह किए बिना अपने पंख फैलाइए और एक लंबी छलांग लगाइए। आप आसमान के लिए बने हैं, जमीन के लिए नहीं। बस हार नहीं माननी है।
0: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
2: की शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
3: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स,
2: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
3: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओपनिंग ऑन 19th August इवनिंग, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा। द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर, बी रेडी टू

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: Nesto Hypermarket, now opening on 19th August, Old Pass

तो जी अब आपको टाटा बाय बाय कर यहाँ से जाने का मेरा वक्त आ गया है। क्या है ना कि भूख लग रही है थोड़ी सी, तो जाती हूँ कुछ खा के आती हूँ। मैं आपकी कशिश, आप मेरे साथ लाइफ मस्ट शो एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अब मैं जाती हूँ। कल वापस सेम टाइम पर मुलाकात होगी हमारी, बहुत सारी अमेजिंग चीज़ों पर बातचीत करेंगे। लेकिन जाते जाते वही कहना चाहती हूँ जो हर रोज़ कहती हूँ कि अपना बहुत सारा ख्याल रखना, खाना खाते रहना, पानी पीते रहना, सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल मत भूलना, और मुझे दुआओं में याद रखना। रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल को जाकर फॉलो कर लो, वहाँ पर आपको सभी आरजेज जो है वो मिल जाएंगे। 3311063 इज आर व्हाट्सएप नंबर, इस पर जब चाहो तब मैसेज कर सकते हो। बाकी आपकी कशिश के साथ स्टे ट्यून रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास टाटा बाय बाय टेक केयर।

0: सुनो सुनो सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
1: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स,
0: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
1: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओपनिंग ऑन 19th अगस्त इवनिंग, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा। द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर, बी रेडी टू शॉप।
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਤਰ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਹਿੰਦੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਰੇਡੀਓ ਆਲ ਆਫ 106.3 FM, ਜੀਓ ਬਿੰਦਾਸ।

0: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
1: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
0: योर स्पेशल ऑफर?
1: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
0: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
1: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: ऑलिव म्यूजिक मैराथन, एक घंटा नॉन स्टॉप बैक टू बैक।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
0: Olive Music Marathon. एक घंटा non-stop back to back गाने.

0: सुनो सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
1: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
0: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
1: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओपनिंग ऑन 19th अगस्त इवनिंग, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा। द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर, बी रेडी टू शॉप।
2: अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों, जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27th दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है, तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है, अभी जाओ olive.qa पर, बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है। स्पॉट्स लिमिटेड है, तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर। मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में। वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
3: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
2: एंड
3: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
2: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
3: कॉल 7022525।
2: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स Gulf on Instagram.
4: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
2: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holdings.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

आप सभी का स्वागत है स्वैग के साथ स्वागत है। ये है रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, बांध रखी है तो और कस के बांध लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम उड़ान भरने वाले हैं, जर्नी किक स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पे हम बातें करेंगे, गाने सुनाएंगे, गुनगुनाएंगे, ढेर सारे किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करेंगे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ऑल रिचार्ज का सिलसिला। आप भी अपने मैसेजेस का सिलसिला शुरू कर दीजिए 3311063 पर। मैसेज कीजिए, बताइए क्या हाल है, कैसा चल रहा है। और यही बोलते हुए चलिए किक स्टार्ट करते हैं ऑल रिचार्ज को और कहते हैं जियो बिंदास।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे छोटी सी कहानी आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। सो बेसिकली आज मैं ऐसे ही बैठ के इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था रील्स देखते हुए, तो एक बहुत ही प्यारा सा रील आया मेरे पास, तो मैंने सोचा उसके बारे में बात कर लेते, मुझे बहुत अच्छा लगा वो वैसे। और उसमें जो शागिर्द होता है बुल्ले शाह का, वो पूछता है कि यार हम इतने गरीब रहते हैं, कभी कभी खाने के लिए कुछ नहीं होता, मगर फिर भी इस गरीबी में आप इतना खुश कैसे रहते हैं, ग्रैटिट्यूड कैसे दिखा सकते हैं, शुक्रिया अदा किस बात का करते हैं। तो बुल्ले शाह कहते हैं, चढ़दे सूरज ढलदे वेखे, बुझदे दीवे बलदे वेखे, हीरे दा कोई मोल ना जाने, खोटे सिक्के चलदे वेखे, जिन्हां दा जगते कोई ओ भी पुत्र पलदे वेखे, उस दी रहमत दे नाल बंदे पानी उत्थे चलदे वेखे। लोकी कहंदे दाल नहीं गलदी, लोकी कहंदे दाल नहीं गलदी, मैं ते पत्थर गलदे वेखे, जिन्हां ने कदर ना कीती रब दी, हथ खाली ओ मलदे वेखे, कई पैरां तो नंगे फिरदे, सिर ते लभदे छावां, मैनू दाता सब कुछ दीता, क्यों ना शुक्र मनावा। कितनी सही बात है ना यार, मतलब हमारे पास जो नहीं है उसके बारे में ज्यादा कंसर्न है, मगर हमारे पास जो है उसके बारे में तो हम सोचते नहीं है। तो शायद कभी कभी वक्त निकाल के हमें सोचना चाहिए जो हमारे पास है, जिनकी हमें कदर करनी चाहिए। और मैं यहाँ पे एक और डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मेरी पंजाबी उतनी बढ़िया है नहीं, मैं बोलता नहीं हूँ, मैंने कोशिश की है, अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिए छोटा भाई समझ के। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और एक ऐसा मूल्य जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो शायद अगर हम जिंदगी में इनकलकेट कर दे तो फिर कोई हमें हरा नहीं सकता, और वो मॉरल है कभी हार नहीं मानी, या फिर नेवर गिव अप। आज है नेवर गिव अप डे, और आज के दिन कुछ कहानियां मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जिन कहानियों का मॉरल यही निकल के आता है कि यू शुड नेवर एवर गिव अप। तो चलिए कुछ कुछ कहानियां आपके लिए हम लेकर आते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पे गाने इंतजार कर रहे हैं, गाने प्ले करते हैं, मगर गानों के उस पार जब हम आएंगे तो कहानियों का सिलसिला शुरू कर देंगे। तो तैयार हो जाइए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: the day. Story of the day. बास का बच्चा मुर्गियों के साथ बड़ा हुआ तो पूरी जिंदगी जमीन पे गुजार दी, क्योंकि उसे लगता था वो उड़ नहीं सकता। एक दिन असली बाज ने उसे देखा और बोला, तुम मुर्गी नहीं आसमान के बादशाह हो। उसने डरते डरते पंख खोले, एक लंबी छलांग लगाई और पहले ही बार में डर को हरा कर आसमान की बुलंदियों पर छा गया। अगर आप भी हालात से डर कर रुक गए हैं तो आज लोगों की परवाह किए बिना अपने पंख फैलाइए और एक लंबी छलांग लगाइए। आप आसमान के लिए बने हैं, जमीन के लिए नहीं। बस हार नहीं माननी है।
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
2: Doctor on air. Brought to you by Naseem Healthcare.
3: Hi, I'm Dr. Sarah Ali from Naseem Medical Center Al Khor. Do you know the best time to take different types of vitamins? Let's divide into two groups. First group, fat-soluble vitamin. This includes vitamin D, A, and E. It's better if you take it with fatty meal for better absorption. Second group, it's water-soluble vitamin, vitamin C and B12. Better if you take it first thing in the morning with plenty of water for better absorption.
2: Doctor on air. Brought to you by Naseem Healthcare.
4: Ab mere laga aur ho ja recharge.
5: Olive recharge.
1: Olive recharge. Radio Olive 106.3 FM par. Jio bindaas.
5: Olive recharge.
2: This hour is brought to you by
6: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.

आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे हम नेवर गिव अप डे के बारे में बात करे थे, कुछ स्टोरीज के बारे में बात करे, तो सबसे पहली स्टोरी होगी विराट कोहली की। और आज के दिन अगर विराट कोहली के बारे में बात नहीं की तो फिर भाई आज का दिन बहुत अधूरा रह जाएगा। तो विराट कोहली का एक गोल्डन रन था यार, स्पेशली अगर हम 2015-16-17 का सीजन देखे तो हर मैच में इतना बढ़िया परफॉर्मेंस, टेस्ट मैच में सेंचुरीज पे सेंचुरीज, ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को इतना बुरा पछाड़ा उन्होंने, मतलब क्या बताऊं मैं, काफी बढ़िया रन, गोल्डन रन। उसके बाद पता नहीं क्या हो जाता है, एकदम से विराट कोहली का फॉर्म कहीं चला ही जाता है। जिस तरीके से विराट कोहली पहले खेलता था वैसे खेल ही नहीं पा रहा, ऑफ साइड में आउट होते जा रहा है, बार बार आउट होते जा रहा है, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं वो खेलने के लिए। विराट कोहली का जो प्राइम था सबको लगा कि चला गया, सबने बोला कि हाँ भाई इसका एरा खत्म हो चुका है, बस थोड़े टाइम के लिए था, अब नहीं है करके। मगर उस टाइम पर भी विराट कोहली लगा रहा, खेलता रहा, अपने गेम को इम्प्रूव करता रहा, अपने फिटनेस को इम्प्रूव करता रहा। और मुझे याद है अफगानिस्तान के साथ का वो मैच जहाँ पे उसने एक सेंचुरी लगाई थी, और बहुत सालों के बाद वो सेंचुरी आई थी। ठीक है, सोच के देखिए, एक बंदा जो हर मैच में सेंचुरी लगा रहा था एक टाइम पे, उसके बाद एक ब्रेक सा आ गया, देन फिर वो एक कमबैक जो हुआ विराट कोहली का, उसके बाद तो भाई मैं क्या ही बताऊं। एंड कभी भी अगर आपने नोटिस किया होगा, जब भी क्रूशियल मोमेंट में इंडियन टीम के बाकी बैटिंग लाइनअप जब फॉल्टर कर जाती है, विराट कोहली खड़ा रहता है। और इसलिए हमें यही सीख मिलती है कि लाइफ में यार बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट फेसेस आएंगे, मगर हार नहीं माननी है। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास। रेडियो

0: Olive, 106.3 FM, Gio Bindas.
1: Oh no, फिर से स्कूल. अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है. रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश. अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक. वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल. किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है. तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है. अभी जाओ olive.qa पर बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है. स्पॉट्स लिमिटेड है तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर. मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में. वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल. अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन.
2: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट.
1: एंड
2: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
1: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर.
2: कॉल 7022525.
1: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव. फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स गल्फ ऑन इंस्टाग्राम.
3: पिज्जा पार्टनर पापा जॉन्स, ऑर्डर अर्न रिपीट विद पापा रिवॉर्ड्स. डाउनलोड पापा जॉन्स ऐप एंड एंजॉय मोर रिवॉर्ड्स.
1: रिफ्रेशमेंट पार्टनर अल वाजबा डेयरी एंड अल शमाल प्योर drinking water, distributed by Gulf Center Holding.

0: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
1: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
0: योर स्पेशल ऑफर?
1: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
0: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
1: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: हाय गाइस, दिस इज जुनिता गांधी।
4: रेडियो ओलिव, आई एम नंबर वन।
3: यू आर लिसनिंग टू मी ऑन रेडियो ओलिव, जियो बिंदास।
4: रेडियो ओलिव, आई एम नंबर वन।
5: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
6: लगा और हो जा रिचार्ज।
7: ओलिव रिचार्ज, रेडियो ओलिव 106.3 FM पर। जियो बिंदास।
6: ओलिव रिचार्ज।
8: This hour is brought to you by
9: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा।

0: करेंगे एक बच्चे के बारे में, जब वो 8th ग्रेड में था उसे अपने स्कूल के बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया था। अगर उसने हार मान ली होती तो शायद आज ये कहानी मैं बोल नहीं पाता। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। मैं बात कर रहा हूं माइकल जॉर्डन के बारे में। जब वो 8वीं क्लास में थे, 8th ग्रेड में थे, उनके स्कूल के बास्केटबॉल टीम में से उन्हें निकाल दिया गया था और वो रोते हुए घर आए, कमरा बंद करके रोने लगे। मगर उनके पेरेंट्स ने बोला कि कोई बात नहीं, अरे कोई गल नहीं पुत्र, तू कर लेगा करके। और अगर वहां पे माइकल जॉर्डन ने हार मान ली होती, बास्केटबॉल खेलना छोड़ दिया होता, तो शायद शिकागो बुल्स को इतने सारे NBA टाइटल्स नहीं मिलते, शायद मुझ जैसे बास्केटबॉल प्लेयर्स को उनका आइडल नहीं मिलता, शायद नाइकी को एयर जॉर्डन का सीरीज नहीं मिलता। मगर उस दिन उस बच्चे ने हार नहीं मानी, उसने फिर से लड़ने की मन में एक बात ठानी और शुरू कर दिया बस। और आज जो कुछ हम देख रहे हैं बास्केटबॉल की दुनिया में, गोट डिबेट तो चलते रहते हैं, मगर सच बताऊं तो हम सब जानते हैं गोट तो एक ही है, वो है माइकल जॉर्डन। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।
2: अभी बजाएगा ना भिड़ो।

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे मैं याद दिलाना चाहूंगा आपको कि अगर स्कूल खुलने के पहले मस्ती करना चाहते हो, फन करना चाहते हो, एक एंटरटेनिंग इवनिंग का हिस्सा बनना चाहते हो तो सीधा जाइए रेडियो ऑलिव के वेबसाइट में, विच इज olive.qa। वहां पे बैक टू स्कूल बैच का एक बैनर दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए, फॉर्म को फिल कीजिए, डिटेल्स भरिए और रजिस्टर कीजिए, क्योंकि आपके पास मौका है एक बहुत ही बढ़िया शाम का, एक बहुत ही बढ़िया इवेंट का हिस्सा बनने का, जहां पे फुल ऑन मस्ती, फुल ऑन धमाल, एंटरटेनमेंट होगा। बच्चों को तो भाई बढ़िया तरीके से हम हंसाएंगे, खिलखिलाएंगे, खुश करेंगे, क्योंकि स्कूल खुलने से पहले, बस्ता बांधने से पहले वन लास्ट राउंड ऑफ एंटरटेनमेंट तो बनता ही है। और यही याद दिलाते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: Venue partner, Abu Sidra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sidra Mall, a complete family destination.
2: Gifting partner, Daiso Japan. You name it, we have it.
1: And Doha Center, shop more, pay less.
3: Old Airport Road, Doha and Alcor.
1: Call 70222525.
4: Creative partner, Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
5: Pizza partner, Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
6: Refreshment partner, Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding. At

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Fresh on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souk Waqif Alkhor.
2: Only laga aur ho ja recharge. Olive recharge.
0: Olive recharge. रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास
3: This hour is brought to you by
1: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.

आप सभी का फिर से एक और बार इस्तकबाल है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल इन 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे एक कहानी मैं सुनाना चाहूंगा आपको MS धोनी के बारे में। हम सब जानते हैं कि MS धोनी ने इंडियन क्रिकेट टीम में काफी लेट एंट्री की है। यूजुअली क्या होता है, 18, 19, 20 साल की उम्र में जो है प्लेयर्स नेशनल टीम में पहुंच जाते हैं, उनको बहुत लंबा करियर मिलता है। अगर हम सचिन की बात करें तो 16 साल की उम्र में वो इंडियन क्रिकेट टीम में पहुंच गए थे, मगर धोनी ऑलमोस्ट 25-26 के एज में जो है इंडियन टीम में आए थे। और 25-26 के एज में एक प्लेयर जो है अपने प्राइम में रहता है और बहुत सारे रिकॉर्ड्स ऑलरेडी बना लेता है, तो उनके जो बाकी पीयर्स थे, अगर हम युवराज की बात करें या फिर बाकी लोगों की बात करें, तो ऑलरेडी उनके पहले वो टीम में पहुंच चुके थे, जगह बना चुके थे, इंटरनेशनल एक्सपोजर उन्हें मिल चुका था, टीम का काफी क्रूशियल हिस्सा बन चुके थे, और धोनी नए नए आए थे। मगर आपको पता है कि धोनी के लाइफ में भी अपॉर्चुनिटीज इतनी ईजिली नहीं आए थे। कई बार अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने के लिए उन्हें बहुत लड़ना पड़ा। इवन उनको एक टूर्नामेंट मिस आउट करना पड़ा क्योंकि टाइम पे फ्लाइट तक नहीं पहुंच पाए या फिर ट्रैवल जो है सही से नहीं प्लान हो पाया। इवन इंडियन टीम में आने के बाद भी पहले के दो मैचेस में तो काफी सैड परफॉर्मेंस था, जीरो में आउट हो गए, कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, मगर धोनी ने हार नहीं मानी। अगर धोनी ने उसी दिन गिव अप कर दिया होता ना अपने क्रिकेटिंग जर्नी से, तो शायद आज इंडिया को इतने ट्रॉफीज नहीं मिलते। सोच के देखिए, एक इंसान ने 28 साल बाद इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया, 2007 का T20 वर्ल्ड कप जिताया, चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, हर मेजर ट्रॉफी जो है आज BCCI के शेल्फ में रखा है, उसमें बहुत बड़ा योगदान जो है धोनी का भी है। एज ए कैप्टन उन्होंने टीम का कल्चर जो है काफ़ी इम्प्रूव किया है, उसके साथ साथ किस तरीके से लीड करना चाहिए उसका भी एक एग्जाम्पल सेट किया है। सोच के देखिए, अगर धोनी ने हार मान ली होती तो क्या होता। तो इसलिए कहता है कि हार नहीं माननी चाहिए। सिचुएशंस जरूर डिफिकल्ट हो सकते हैं, हालात बहुत मुश्किल हो सकते हैं, मगर मुस्कुराते हुए जियो बिंदास कहते हुए आगे बढ़िए, और यही बोलते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं। स्टे ट्यून्ड, रेडियो ऑल 106.3 FM, जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: गर्मी की तपती धूप में हमारे घरों का आराम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका एक छोटा सा कदम बड़ा और स्थायी बदलाव ला सकता है।
2: अपने एयर कंडीशनर का तापमान 23 से 24 डिग्री पर सेट करें और खिड़कियां बंद रखें। इससे हम सभी मिलकर बिजली ग्रिड पर पड़ने वाले दबाव को कम कर सकते हैं।
1: ऊर्जा संरक्षण का मतलब त्याग नहीं है बल्कि यह जागरूकता है। #KeepItSustained, क्योंकि सुविधाएं, कृतज्ञता और संसाधनों के प्रति जागरूकता ही उन्हें लंबे समय तक बनाए रख सकती है।
2: कतर जनरल इलेक्ट्रिसिटी City and Water Corporation, करामा।
3: Oh no, फिर से स्कूल। अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है। तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है। अभी जाओ olive.qa पर बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है। स्पॉट्स लिमिटेड है तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर। मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में। वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
4: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
3: एंड
4: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
3: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
4: कॉल 7022525।
3: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स Gulf on Instagram.
5: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
3: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding.

0: हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुबेर, रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे रोनाल्डो के बारे में एक कहानी मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में, उनके बारे में बहुत सारे लोग, थोड़े हेटर्स भी जरूर हैं उनके, मैं मानूंगा जरूर, मगर फिर भी मुझे एक चीज जो बहुत अच्छी लगती है कि वो कभी हार नहीं मानते। कितना भी बड़ा सिचुएशन हो, कितना भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, ऑब्स्टेकल कितना भी बड़ा हो, मुश्किल हो, वो हमेशा लगे रहते हैं, एंड मोमेंट तक लगे रहते हैं। तो एक बार हुआ ये कि उनके करियर के अर्ली स्टेज में मैनचेस्टर यूनाइटेड एक मैच खेलने गई जहाँ पे रोनाल्डो बहुत ड्रिबल कर रहे थे, ठीक है, और उनके प्लेयर्स ने भी बोला कि भाई इतना ड्रिबल क्यों कर रहा है, नो पास कर, ये कर, वो कर। और रोनाल्डो समझ गया कि यार अगर मैं ऐसे रहूँगा तो मैं अपने गेम को इवॉल्व नहीं करूँगा तो शायद आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊँगा। तो उस एक सिचुएशन में अगर रोनाल्डो ने सोचा होता कि यार इतना हो गया ना, मदीरा से आया हूँ मैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड में खेला मैंने, थोड़े बहुत गोल भी किए मैंने, अब छोड़ देते हैं करके सोच लिया होता, तो शायद आज जो एक फ़ैन फॉलोइंग है, जो एक इज्जत है रोनाल्डो की, वो नहीं होती। उसके हिसाब से उन्होंने अपने गेम को इम्प्रोवाइज़ किया, इवॉल्व किया। जो लोग रोनाल्डो को बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं उन्होंने ध्यान दिया होगा कि प्रीमियर लीग में स्टार्टिंग में जब रोनाल्डो खेलते थे तो काफ़ी ड्रिबलिंग करते थे, मूव्स करते थे, ये सब करते थे, बट धीरे धीरे धीरे जैसे जैसे साल बढ़ते गए उन्होंने अपने गेम को भी चेंज किया है, अपने प्लेइंग स्टाइल को बहुत चेंज किया है, अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया है, और उन्होंने कभी भी अपने आप के ऊपर गिवअप नहीं किया। और यही बात याद दिलाते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
1: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन.
2: हाय, दिस इज विपाशा बासु.
3: हाय, मैं राजकुमार राव.
4: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा.
5: हाय, दिस इज दिशा पार्डी.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो 106.3 FM.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे एक छोटा सा टास्क मैं आपको देता हूं, ठीक है? आप खोलिए रेडियो ऑलिव का वेबसाइट विच इज olive.qa। वहां पे आपको दिखेगा बैक टू स्कूल बैच का एक बहुत ही बढ़िया बैनर, उस पे करिए क्लिक, आएगा एक फॉर्म, उस फॉर्म को फिल कीजिए, रजिस्टर कीजिए, क्योंकि आपके पास मौका है एक बहुत ही फन फिल्ड इवनिंग का हिस्सा बनने का, स्कूल खुलने से पहले मजे करने का। और उसके लिए आपको बस रजिस्टर करना है और सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स को मौका मिलेगा अबू सिद्रा मॉल में 27 अगस्त को होने वाले बैक टू स्कूल बैच का हिस्सा बनने का। और यही बात याद दिलाते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: Venue partner Abu Sidra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sidra Mall, a complete family destination.
2: Gifting partner Daiso Japan, you name it, we have it.
1: And Doha Center, shop more, pay less.
3: Old Airport Road, Doha and Alcor.
1: Call 70222525.
4: Creative partner Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
5: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
6: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holdings.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओपनिंग ऑन 19th अगस्त इवनिंग ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा। द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर, बी रेडी टू शॉप।
3: Jackman की पावर पैक्ड रेंज, हैवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ। विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ।
4: ऑलिव लगा और हो जा रिचार्ज।
0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
4: ऑलिव रिचार्ज।
5: This hour is brought to you by
6: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा।

आप सभी का एक और बार इस्तकबाल है, आप सुन रहे हो रेडियो ऑलवे 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहां पे भाई एक चीज हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, वो यही है कि अगर आपने अभी तक रेडियो ऑलवे के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो जाने क्या किया। सीधा जाइए इंस्टाग्राम पे, radioolive.qa सर्च कीजिए और वहां पे अगर एक फॉलो बटन दिख रहा है उसे प्रेस कीजिए, एक ही बार करना है, ठीक है। और आप हमारे कंटेंट के साथ जरा इंटरेक्ट कीजिए भाई, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सेव कीजिए, हमें सुनते हुए स्टोरी डालिए, टैग कीजिए, हम भी स्टोरी को रीशेयर करेंगे। एंड उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये बहुत सारे डिजिटल कॉन्टेस्ट जो है हमारे इंस्टाग्राम पेज पर आते हैं, तो आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से जुड़े रहिए हमारे पेज के साथ, क्योंकि जीतने के मौके हैं भाई। और यही याद दिलाते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: स्टोरी ऑफ द डे स्टोरी ऑफ द डे स्टोरी ऑफ द डे।
1: एक बाज का बच्चा मुर्गियों के साथ बड़ा हुआ तो पूरी जिंदगी जमीन पे गुजार दी, क्योंकि उसे लगता था वो उड़ नहीं सकता। एक दिन असली बाज ने उसे देखा और बोला, तुम मुर्गी नहीं आसमान के बादशाह हो। उसने डरते डरते पंख खोले, एक लंबी छलांग लगाई और पहले ही बार में डर को हराकर आसमान की बुलंदियों पर छा गया। अगर आप भी हालात से डर कर रुक गए हैं तो आज लोगों की परवाह किए बिना अपने पंख फैलाइए और एक लंबी छलांग लगाइए। आप आसमान के लिए बने हैं, जमीन के लिए नहीं। बस हार नहीं माननी है।

0: Kolkata's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
2: लगा और हो जा रिचार्ज.
3: ऑलिव रिचार्ज, रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर. जियो बिंदास.
2: ऑलिव रिचार्ज.
4: This hour is brought to you by
5: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.

तो भाई धीरे धीरे टाटा बबाई करके निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे 5 बजने वाले हैं। पार्टी अभी बाकी है और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, आपकी इवनिंग को जबरदस्त बनाने के लिए सिमरन पहुंचने वाली है। तो खुली बाहों से सिमरन का स्वागत कीजिए, जितना प्यार मुझे दिया है उतना और उससे ज्यादा प्यार जो है सिमरन को दीजिए। और जाते जाते जाते आपसे यही दरख्वास्त है कि आप अपना ख्याल रखिए, अपने खास लोगों का ख्याल रखिए और हमें जरा दुआओं में याद रखिए। तो फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, खिलखिलाते रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास। रेडियो

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: सुनो सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओपनिंग ऑन 19th अगस्त इवनिंग, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा। द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर, बी रेडी टू शॉप।
3: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
4: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
3: योर स्पेशल ऑफर?
4: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
3: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
4: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
3: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।

are listening to Radio Olive 106.3 FM. Radio Olive, Gio,

डिंगडंग डिंगडंग डिंगडंग करने वाली हूँ यार, कौन रोकेगा मुझे भाई साहब। हो गए 24 घंटे, अब नहीं रह सकती आप लोगों से दूर। मैं क्या जी सोनियों की दादी की हाल चाल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर आपकी साथ जबर

आपके लिए लेकर आगे आ चुकी हूँ। और बताओ क्या हाल चाल है आपके, कैसा रहा आपका आज का दिन। एक बात बताऊँ आपको, कल ना वेंसडे है, वेंसडे है तो अपन थोड़े से और नजदीक आ जाएंगे थर्सडे के लिए, जो कि हम वीकेंड ही कंसिडर करते हैं। मतलब थर्सडे को तो काम वाम खत्म हो जाता है, फिर वीकेंड चालू हो जाता है अपना। तो मैं आपको ऐसे मोटिवेशन जो थी वो दे रही थी, अगर आपका पूरा दिन ऐसा रहा यार बहुत सारा काम था, कोई बात नहीं यार, काम करते रहो, घर पे आके काम को छोड़ दो बिल्कुल, और जब सिमरन कौर का शो चल रहा हो तो सारा स्ट्रेस छोड़ दो। आप

आपके पूरे दिन के बारे में बताने के लिए, आपके गुड इवनिंग वाले मैसेजेस के बारे में बताने के लिए 3311063 पर आपके व्हाट्सएप मैसेजेस पहुंच जाने चाहिए। आपकी हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी को आप सुन रहे हो, मुस्कुराना तो बनता है दोस्त।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओपनिंग ऑन 19th अगस्त इवनिंग ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा। द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर, बी रेडी टू शॉप।
3: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन। आप सुन रहे हैं रेडियो ऑल 106.3 FM।

0: जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। गदर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

आपके बच्चे भी साथ में आएंगे यार, क्योंकि हम आप लोग आप यू नो आप लोगों के बच्चों के लिए जो है वो लेकर आ रहे हैं बैक टू स्कूल बैश। जी हाँ, बैक टू स्कूल जो है ये बैश हम आपके बच्चों के लिए करवाने वाले हैं, क्योंकि आपके बच्चे जाने वाले स्कूल, उससे पहले उनके लिए धमाल जो है वो होना जरूरी है। और ये धमाल जो है वो होने वाला है अबू सिद्रा मॉल में इस 27 अगस्त को दोपहर 3 से लेके शाम के 7 बजे तक, जहां पर आपके बच्चे बहुत सारा फन करने वाले हैं, बहुत सारी गेम्स जो है वो खेलने वाले हैं, नॉन स्टॉप फन होने वाला है इन शॉर्ट। लेकिन इन शॉर्ट में आपको ये भी बता दूं कि आप तभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आप अपने बच्चों को रजिस्टर करवाएंगे तो। तो रजिस्ट्रेशन का बहुत ही सिंपल फंडा है, मैं आपको बता देती हूँ। सो आपको olive.qa हमारी वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पर बैक टू स्कूल का फॉर्म फिल करना है, दैट्स इट। बट हम आपको इसीलिए जोरों शोरों से बता रहे हैं क्योंकि जो स्पॉट्स हैं ना वो लिमिटेड हैं, तो फटाफट से आपको रजिस्टर जो है वो करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।

0: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो Ooredoo ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद Ooredoo.
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद.
4: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
5: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

जी सुनो सुनो, बादल पानी, वाह सुनने में कितना अच्छा लगता है ना यार। लेकिन पानी आसमान से बरसे ना बरसे, लेकिन क्रिएटिव तरीके से हम पानी जो है वो दोहा में ला सकते हैं। मैगी जी सुनियो की तदगी हाल चाल सत श्री अकाल, सिमरन कौर है आपके साथ। दोहा में हवा से पानी बन रहा है। जी हाँ, कतर नेशनल लाइब्रेरी के एंट्रेंस पे एक एयर टू वाटर मशीन जो है वो लगा है, जहां पर जो हवा होती है ना, हवा का मॉइस्चराइजर होता है, उसको खींच कर ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट होता है ये। अब देखो यार, मैंने भी इसके बारे में पढ़ा है, तो जितना मुझे समझ लगा वो ये है कि जो ह्यूमिड हवा होती है ना, उसको वो अंदर खींचती है ये मशीन, ठीक है। फिर उसको कूल किया जाता है, फिर उसके बाद इसमें जो वेपर कंडेंस लगा होता है उससे पानी बन जाता है। अब ये है कि पानी बन गया तो पानी पीना नहीं है, उसके बाद इसका मल्टी स्टेज फिल्ट्रेशन होता है, प्यूरिफिकेशन होता है, और जब पूरे स्टैंडर्ड्स को ये मीट करता है ना कि ओके फाइन अब ये पीने के लायक हो गया है, उसके बाद ये पब्लिक टैप से डिस्पेंस होता है और ये पानी बिल्कुल फ्री है। एग्जैक्टली, सो यानी कि आपको मॉइस्चराइजर की जरूरत है पानी बनाने के लिए, अपने यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है और ये सारी चीजें जो है वो बड़ी इजीली हो जाते हैं, तो इससे ये टेक्नोलॉजी जो बनाई गई है भाई साहब वाकई में कमाल है। सो आप मुझे बताइए कि ये जो ह्यूमिड हवा है जो अंदर खींचती है इसमें और उसके बाद ये पानी बनता है उससे, सो जो एयर टू वाटर मशीन में, तो क्या आप ये पानी पीना चाहेंगे? यार मैं एक बार जरूर ट्राई करना चाहूंगी कि लाइक कि इसका वैसे तो ये बिल्कुल फिल्ट्रेशन होती है, प्यूरिफिकेशन होती है, तो पानी जो है वो सेफ टू ड्रिंक है, बट मुझे ये जरूर जो है वो ट्राई करना है। आप में से अगर किसी ने किया तो मुझे जरूर बताइएगा। ये कतर नेशनल लाइब्रेरी की एंट्रेंस पे लगा है, काफी क्रिएटिव लग रहा है यार मामला। I know, right?

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। Jackman की पावर पैक्ड रेंज हैवी ट्रक्स टिपर्स ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ।
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ।
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
4: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: मैं हूँ विवेक आनंद ओबरॉय. यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव जियो बिंदास.
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

वो नंबर लिख के गूगल करेंगे और जैसे ही आप गूगल करेंगे आपको एक मैसेज दिखेगा। वो मैसेज क्या आया है वो आपने कॉपी पेस्ट करके मुझे व्हाट्सएप करना है 3311063 पर। तो तैयार है वो नंबर, एक काम करिए अपना फोन निकालिए, वो नंबर टाइप कर लीजिए ताकि आपको नंबर जो है वो याद रहे। सो मैं दो बार बोलूंगी, ओके 5201314 5201314। ये आप टाइप करिए और गूगल करिए और मुझे बताइए कि आपको क्या मैसेज दिख रहा है। यस, जब आप गूगल करेंगे तो आपको एक मैसेज दिखेगा। कॉपी पेस्ट करिए 3311063 पे आप मुझे भेज दीजिए। इंतजार कर रही हूँ आपके मैसेज का। 5201314 क्विकली।

0: सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
1: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
0: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
1: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओपनिंग ऑन 19th August इवनिंग, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा। द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर, बी रेडी टू

कहते हैं मौसम। मौसम आपके सुनो, मौसम के हाल। बाकी के हाल वापस लौट के बताती हूँ, थोड़ी देर में प्रेयर का टाइम होने वाला है।

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: You are listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
2: सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
3: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
2: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
3: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओपनिंग ऑन 19th अगस्त इवनिंग, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा। द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर, बी रेडी टू शॉप।
4: हाय, मैं हूं सोहाली खान एंड यू आर लिस्निंग टू रेडियो ऑलिव जियो बिंदास।
1: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
6: सिमरन के साथ।
7: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
8: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: आपके साथ लोग ना क्रिएटिविटी के नए नए तरीके जो है वो ढूंढ लेते हैं और ये क्या है यार
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ
0: एक iOS एप्लीकेशन है कैरियर पिज. ओके सो ये एक ऐसी चीज है जहां पर वर्चुअली जो है वो एक तरीके से पिजन जो है वो मैसेज कैरी करके आपका दूसरों तक पहुंचाते नहीं लाइक ये एप्लीकेशन के अंदर वो पिजन आपको दिखाई देगा वो आपका मैसेज जो है वो दूसरे तक पहुंचाएगा लेकिन वो पिजन की स्पीड से ही चल रहा है. हो सकता है कि आपका मैसेज पहुंचने में 22 घंटे लग जाए. अगर मैं बात करूं लाइक LA से न्यूयॉर्क अगर आपको वो मैसेज भेजना है इस एप्लीकेशन के थ्रू तो वो 22 घंटे लग सकते हैं. हो सकता है कि बीच में अगर आप लाइव ट्रैकिंग कर रहे हैं देख रहे हैं कि आपका मैसेज कहां तक पहुंचा है. सो 2% के चांसेस ये है कि पिजन जो है वो आपका बीच में गुम हो जाए डिसअपीयर हो जाए मिड फ्लाइट एंड उसके साथ साथ वो हो सकता है बीच में पिजन मर जाए और आपका मैसेज कभी भी ना पहुंचे. ये सब कुछ वर्चुअली जो है वो हो रहा है एंड उसके साथ साथ आप जो है अगर आप चाहते हैं कि आपका आपका मैसेज जल्दी पहुंचे तो आप एक एक्स्ट्रा पिजन जो है वो भी ऐप में परचेज कर सकते हो. पता नहीं क्या क्या चल रहा है यार मेरे को काफी ज्यादा ये इंटरेस्टिंग लग रहा है लेकिन ये क्या है वो नहीं समझ लग रहा मुझे.

0: Jackman की पावर पैक्ड रेंज, हैवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ। विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ।
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ।
3: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
4: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

वाइब है यार इस गाने की, है ना, दिल ही दिल में। देवन रेमो फर्नांडिस की आवाज, आपके और मेरे दोस्तों के लिए और मोहब्बत करने वालों के लिए।

0: क्या हाल है? सब ठीक है, बढ़िया है। ऐसा मुंह की लटका के रखे, ये गोभी जैसा मुंह ना बनाया करो। मुझे आप हंसते हुए अच्छे लगते हो, ठीक है? और हंसते हुए बहुत सारी बातें भी कर रहे हैं और आप लोगों के मैसेजेस भी आ रहे हैं। और अगर आपने मुझे अभी तक मैसेज नहीं भेजा तो क्या कर रहे हो? अच्छा, मैं आपको एक काम देती हूं। अगर आपने मुझे पिछले घंटे नहीं सुना था तो मैं इस घंटे आपको बताती हूं कि मैं आपको एक नंबर बता रही हूं। उस नंबर को आपने अभी के अभी गूगल करना है और गूगल पे इस नंबर को डालने के बाद क्या मिलता है आपको, क्या मैसेज दिखता है, वो आपने मुझे भेजना है। ओके, सो नंबर है 520-13-14। जी हाँ, 520-13-14 यानी कि 520-1314। इसको गूगल पे डालिए और मुझे बताइए कि आपको क्या मैसेज दिख रहा है। वही व्हाट्सएप नंबर में 3311063 पर आप मुझे भेज दीजिए। तब तक आपको थोड़ा ज्ञान देती हूँ।
1: Gen Z decoded. ऐसे है क्या?
0: दा, दा, दा, दा। एक वर्ड है मिड, ओके, जो Gen Z स्लैंग यूज की जाती है। ये आप किसी को इंसल्ट करने के लिए नहीं, मतलब लाइक किसी चीज के बारे में जब आप बोलते हो कि जो कि टेरेबल नहीं है, डेफिनेटली नॉट गुड, बट उसके लिए आप ये वर्ड जो है वो अब ये यूज करते हो, मिड वाला। लाइक फॉर एग्जाम्पल, द न्यू सुपर हीरो मूवी वॉज सो मिड। लाइक इतनी ज्यादा बढ़िया नहीं थी यार, मतलब बुरी भी नहीं थी लेकिन बढ़िया भी नहीं थी। तो आप इस तरह के वर्ड यूज कर सकते हो, मिड। 6:32:42 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुकी है। गंदी बात होने वाली है अब। सुनते रहो ना, खुश रहा करो यार। कुछ दिल में अगर आपके है ना, ऐसे भभके मार रहा अंदर और है नहीं है कि कोई जिसके साथ आप वेंट आउट कर सको, डार्लिंग मैं हूं ना यार। 3311063 पर मैं हूं ना बोलते हुए शाहरुख खान वाली फील आ गई थी मुझे। 4 3 2

0: स्टोरी ऑफ द डे स्टोरी ऑफ द डे स्टोरी ऑफ द डे।
1: एक बास का बच्चा मुर्गियों के साथ बड़ा हुआ तो पूरी जिंदगी जमीन पे गुजार दी, क्योंकि उसे लगता था वो उड़ नहीं सकता। एक दिन असली बाज ने उसे देखा और बोला, तुम मुर्गी नहीं आसमान के बादशाह हो। उसने डरते डरते पंख खोले, एक लंबी छलांग लगाई और पहले ही बार में डर को हरा कर आसमान की बुलंदियों पर छा गया। अगर आप भी हालात से डर कर रुक गए हैं तो आज लोगों की परवाह किए बिना अपने पंख फैलाइए और एक लंबी छलांग लगाइए। आप आसमान के लिए बने हैं, जमीन के लिए नहीं। बस हार नहीं माननी है।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
2: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे
4: सिमरन के साथ।
5: Zabardast evening, make you drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: क्योंकि देखो स्कूल खुलने वाले हैं, समर वेकेशन ओवर होने वाली है, उससे पहले पार्टी तो बनती है। बैक टू स्कूल बैश का टाइम आ चुका है, जो कि इस 27 अगस्त को अबू सुद्रा मॉल में हम करने वाले हैं आपके बच्चों के साथ। बहुत सारा फन गेम्स एंड ऑल, मजा आ जाएगा। फिर आप मॉल घूमिए, बच्चे हमारे पास छोड़ दीजिएगा, हम हैंडल कर लेंगे उनको। बट उससे पहले खुद को रजिस्टर करवा लीजिए क्योंकि सीट्स लिमिटेड हैं। फिर बोलेंगे कि यार हमारे बच्चे रो रहे हैं, यार आप उनको बुला लीजिए, किस तरह से स्टेज पे आ सकते, किस तरह खेल सकते। फिर क्या होता है ना कि हर चीज़ का अपना एक रूल होता है दोस्तों, आपको अभी क्या भी करना है वहां पे आके नहीं बोलना है आपको अबू सिद्रा मॉल में आके, उससे पहले आपको olive.qa पे जाके खुद को रजिस्टर करवा लेना। That's it, done. olive.qa.
1: Venue partner, Abu Sidra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sidra Mall, a complete family destination.
2: Gifting partner, Daiso Japan. You name it, we have it.
1: And
2: Doha Center, shop more, pay less.
1: Old Airport Road, Doha and Alcor.
2: Call 70222525.
1: Creative partner, Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
3: Pizza partner, Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.

0: fresh on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Dana Dal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
1: सुनो सुनो सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओपनिंग ऑन 19th अगस्त इवनिंग, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा। द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर, बी रेडी टू

खूबसूरत कोई गाना हो सकता है क्या? 7:08 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं और आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उसके गाने साहब अलग लेवल की फिल्म, अलग लेवल के गाने। लेकिन कयामत से कयामत तक फिल्म का टाइटल पहले ये नहीं था, इस फिल्म का टाइटल था पहले नफरत के वारिस। जी हाँ, और इन्होंने अपनी फिल्म जब इनकी आई थी इन्होंने बहुत ही इनोवेटिव कैंपेन किया था पहली बार फिल्म इंडस्ट्री में। सो उन्होंने होर्डिंग्स लगाए थे जहां पर फिल्म की प्रमोशन के लिए होर्डिंग्स तो लगे हैं पर उस पर कोई चेहरा नहीं था। उन्होंने एक लाइन लिखी थी, हु इज आमिर खान एज दी गर्ल नेक्स्ट डोर, राइट। सो ये चीज उन्होंने लिखी तो लोगों के अंदर ऐसे आया कि यार ये क्या चीज है। एंड उसके साथ साथ इस फिल्म का गाना है जो पापा कहते हैं, राइट। सो जिसमें एक वो लास्ट में जब वो एक पैरा गारा होता है, आंखों में जादू होठों में प्यार, राइट। सो वो जो लड़की उनके साथ होती है ना वो होती है रीना दत्ता। रिसेंटली आमिर खान की इस फिल्म के लड़की के साथ शादी हुई होती है रीना दत्ता के साथ। सो वो सेट पे आती है, सो उसी टाइम पे वो शूट जो है वो उनके साथ होता है। ये चीज़ें आपको नहीं पता थी ना? मेरे को पता है बेबी, और भी बहुत सारी बातें हैं इस फिल्म के बारे में जो किया मैं आपको वापस लौट के बताती हूँ। चलो फिर अगला गाना आपके लिए।

0: Olive 106.3 FM Geo Bindas.
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओपनिंग ऑन 19th अगस्त इवनिंग ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा। द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर, बी रेडी टू शॉप।
3: ससिकाल जी, मैं हां हरभजन मान।
4: हरभजन मान,
3: तुसी सुन रहे हो कतर हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑल ऑफ 106.3 एफएम जियो बिंदास।
0: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
6: आरजे सिमरन के साथ।
7: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
8: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
9: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

कयामत तक फिल्म के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये फिल्म हिट हुई थी बहुत सारी, ठीक है, जब ये फिल्म हिट होगी तो उसके बाद सोचा कि यार इस फिल्म के लिए थोड़ा सा और जो है वो लोगों को अपने पास में लेके आता है, तो उन्होंने एक स्ट्रेटजी निकाली। कहते हैं कि यार आप 8 टिकट जो है वो खरीदो, ठीक है, अगर आप 8 या 8 से ज्यादा टिकट खरीदते हो तो आपको आमिर खान और जूही चावला का जो पोस्टर है जिसमें उन्होंने साइन किया हुआ है ऑटोग्राफ्ड, वो आपको जो है वो फ्री मिलने वाला है। सो यार बहुत सारे लोगों ने टिकट्स खरीदी क्योंकि जूही चावला और आमिर खान उस टाइम पे मतलब एक अभी आज भी हैं ऑफकोर्स वो, लेकिन जो एक पागलपन था फिल्म के दौरान लोगों का, क्योंकि ये फिल्म बहुत ज्यादा हिट हो रही थी और इसके गाने बहुत ज्यादा कमाल कर रहे थे, भाई पगला गए लोग, कहते हैं कि ठीक है ओके। सो उसके साथ साथ ये जो था ये काम किया एक्चुअली, तो काफी सारी टिकट जो है वो बिकी। बट इसमें आपने अगर एक चीज नहीं नोटिस किया तो मैं आपको बता देती हूँ, जो यंगर आमिर खान थे ना इसमें, इमरान खान ने उनका रोल जो था वो निभाया था। एंड कयामत से कयामत तक फिल्म के अवार्ड्स के बारे में अगर हम बात करें तो फिल्म फेयर में इनको बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो था वो मिला था 1988 में। 10 नॉमिनेशन थे, 10 में से 8 नॉमिनेशन जो थे उसके अवार्ड जीते थे यार, एक नंबर।

0: चलो फिर ये गाना आएगा थोड़ी देर में. टिल देन इस घंटे हम नेम गेम भी खेलने वाले हैं एंड वापस लौट के रियलिटी चेक लेके आने वाली हूँ.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट.

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Dana Dal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khor.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
5: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
6: लुलु हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

0: सुनी हो, कहां कहीं से नहीं सुनी होगी ना यार। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप सबके मैसेजेस के लिए रियलिटी चेक दे रही हूँ, जरा सुन लेना।
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ।
0: कुछ लोगों के मुंह से आपने अपने लिए सुना होगा, अरे तुम तो बड़े बदल गए हो यार, अरे तुम तो बहुत बदल गई हो यार, क्योंकि आपने उनकी बातों को सुनना बंद कर दिया है। हर बात पे हां जी करना जो है वो बंद कर दिया है, और उनकी हां में हां मिलाना बंद कर दिया, अपनी बाउंड्रीज सेट कर ली हैं। इसीलिए कहते हैं अरे तुम तो बहुत बदल गई हो, अरे तुम पहले जैसी नहीं हो, तो क्या बेवकूफी रहना पूरी जिंदगी। इंसान कभी ना कभी तो सीखता है। अगर आपने अपनी जिंदगी में ये सीख ले ली है कि जहां पर आप दूसरों की ना सुन के खुद की सुनते हैं, माय फ्रेंड, आप जो है वो जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, और आगे बढ़ना ही जिंदगी है यार। वापस लौट के

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدنا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: آپ سن رہے ہیں قطر کا نمبر ون ریڈیو اسٹیشن ریڈیو اولیو 106.3 FM. ट्रैकमैन की पावर पैक्ड रेंज, हेवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ। विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ।
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ
5: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
6: लुलु हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह।
1: गुलराज सिंह
0: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3।
1: जियो बिंदास।
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

ਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਸਤਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਅਬ ਬਿਨਾ ਦੇਰ ਲਗਾਏ ਬੇਬੀ तो अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम मैं अभी कभी ले लूं तो आप अभी कभी अपना नाम जो है वो मुझे लिख के व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 3311063 जी 3311063 इस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ आप अपना नाम लिख के भेज दीजिए और जैसे ही आपका नाम मुझे स्क्रीन पे दिखेगा वो सारे नाम मैं बोलने वाली हूँ। मोहम्मद, आसमा, डेजी, रवि, अब्बास, नबील, रिचर्ड, ए के, करुणा, अहमद, मिथिलेश, SJ, ओके थैंक यू सो मच कृष्णा जी, थैंक यू सो मच चेरी जी, थैंक यू सो मच खेमराज जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। मोहम्मद जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। राजा आशिर उस्मान जी, थैंक यू सो मच। फारा चांद जी, थैंक यू सो मच। खेमराज, ऑलरेडी मैं आपका नाम जो है वो बोल चुकी हूँ। और शबी जी, थैंक यू सो मच। नारायण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। सूरज जी, थैंक यू सो मच। फातिमा यूसुफ जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। क्विकली दोस्तों अपना नाम लिख के भेजो 3311063 पर। शिवा जी, थैंक यू सो मच। फिरोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। नबील कुरैशी जी, खिजर हदया, हयात खान जी, थैंक यू सो मच। शबी जी, थैंक यू सो मच, ऑलरेडी मैं आपका नाम ले चुकी हूँ। हाजरा जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। हाफिज जी, थैंक यू सो मच। सुरेश जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। बाबू जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। सोना जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। हाय हेलो मत लिखिए, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों अपने नाम लिखो। सुरेश जी, थैंक यू सो मच। उस्तव जी, थैंक यू सो मच। नबील कुरैशी जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। अभी थैंक यू मत लिखियो यार, अभी थैंक यू लिखने का टाइम नहीं है। आप मुझे आपके हस्बैंड का नाम कैसे पता होगा? आप अपना उनका नाम लिखिए ना। सोना जी कह रही हैं कि मेरे हस्बैंड को विश कर दीजिए, हैप्पी बर्थडे है जी, हमारी तरफ से बधाइयां मिठाइयां आते हैं। शंकर जी को हैप्पी वाला बर्थडे है हमारी तरफ से। संदीप राणा जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। दैट्स इट फॉर नाउ। जिन जिन लोगों के मैंने नाम ले लिया बेटा, अब आप थैंक यू लिख दो और अपना फेवरेट वाला इमोजी जो है वो

0: सुनो सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
1: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
0: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
1: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओपनिंग ऑन 19th August इवनिंग, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा। द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर, बी रेडी।

0: Tanisha.
1: Few days back I was talking about this and आज देखो मैंने ये पढ़ भी ली थी. तनिषा के साथ आप रेडियो 106.3 FM पर बिंदास मॉर्निंग्स चल रहा है यहाँ पर. एंड कुछ दिन पहले ही मैं बात कर रही थी ना कि यार दिस इज वेरी आयरोनिक कि हम एक मशीन

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: मैं हूं अनिल।

0: ट्रैक पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
1: साथ। जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
2: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: ਸੁਣਿਓ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਹੈ ਆਪ ਖੇਲਣ ਦਾ
1: ਰੇਡੀਓ ਓਲਿਵ ਪਰ
2: बहुत बढ़िया बहुत
0: एक चुटकी सॉन्ग जरा ध्यान से सुनिए और बताइए कौन सा गाना है बस इससे ज्यादा जरूरत ही नहीं है यार बताओ ये कौन सा गाना लग रहा है आपको प्लीज मुझे लिखने की जहमत मत करिएगा क्योंकि ये काम मैं भी नहीं करती हूँ वॉइस नोट बढ़िया होता है इसमें आपकी वाइब भी आ जाती है आवाज भी आ जाती है जवाब भी मिल जाता है सो एकदम सिमरन कौर वाली एनर्जी के साथ हे सिमरन अपना नाम बताइए और गाना गा सकते हैं या बोल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है 3311063 पे भेज दो एक बार वापस से सुना दूं आंसर कर दो वेट कर रही हूँ यार
3: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर
4: क्या बात है सर क्या बात ये बात है
5: ओए हॉली हॉली गिद्दे विच

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओपनिंग ऑन 19th अगस्त इवनिंग ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा। द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर, बी रेडी टू शॉप।
3: फिर से स्कूल। अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों, जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अब सुद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है, तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है। अभी जाओ olive.qa पर बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है। स्पॉट्स लिमिटेड है तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर। मिलते हैं अबू सुद्रा मॉल में। वेन्यू पार्टनर अबू सुद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सुद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
4: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
3: एंड
4: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
3: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
4: कॉल 7022525।
3: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स गल्फ ऑन इंस्टाग्राम।
5: पिज्जा पार्टनर पापा जॉन्स, ऑर्डर अर्न रिपीट विद पापा रिवॉर्ड्स। डाउनलोड पापा जॉन्स ऐप एंड एंजॉय मोर रिवॉर्ड्स।
3: रिफ्रेशमेंट पार्टनर अल वाजबा डेयरी एंड अल शमाल प्योर ड्रिंकिंग वाटर, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय गल्फ सेंटर होल्डिंग।

0: जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
3: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: सुनियो की दादी की हलचल। सत श्री अकाल, सिमरन कौर है आपके साथ और हम खेल रहे हैं
1: रेडियो ऑलिव पर।
2: बहुत बढ़िया, बहुत।
0: और एक चुटकी सॉन्ग में मैंने आपको एक चुटकी वर्ड सॉन्ग सुनाया था। चलिए आप लोगों के जवाब सुनते हैं।
3: दिस इज मून।
0: हाय मून।
3: द सॉन्ग इज तुम ही देखो ना फ्रॉम कभी अलविदा ना कहना, माय फेवरेट शाहरुख सॉन्ग। थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू सो मच लव।
4: Hey Simran, this is Burhan here.
0: Anji.
4: Let me dedicate this song to my wife.
0: Sweet.

0: जाने नहीं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम डार्लिंग जब आप वॉइस नोट रिकॉर्ड करेंगे ना, तो प्लीज रेडियो का वॉल्यूम कम कर लिया करें यार, आपकी आवाज सुननी होती है।
1: Hey, सिमरन, गिरीश यार,
0: हाय गिरीश,
1: हाउ आर यू?
0: गुड यार।
1: सॉन्ग जो आपने सुनाया वो है तुम ही देखो ना ये क्या हो गया, तुम्हारा हूं मैं और तुम मेरी, तुम ही देखो ना ये क्या हो गया, तुम्हारा हूं मैं और तुम मेरी।
0: Awesome! एक नंबर यार, कमाल हो आप लोग, बवाल हो।

0: करते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे सिमरन के
1: साथ। जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
2: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: क्या गाना है यार. लेकिन जाने से पहले शो के आखिरी दो गाने
1: खामोशी मेरी
0: और सच कहूं तो
1: तेरा यार हूं मैं.
0: बाकी की यारी दोस्ती कल नहीं माती. कल शाम को 5 बजे फिर से आपसे मिलती हूँ. सिमरन कौर के कल्टी माने का टाइम आ चुका है. अगले 2 घंटे आप मिडनाइट लाउंज को एंजॉय करिए. टिल देन खांदे बिंदे रहो, ऐश करते रहो, चेहरे दे वड्डे वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना यार. बी नाइस टू एवरीवन. गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू 100 किलो.

Good evening. You are listening Radio All at 106.3 FM. This is me, Muskan, with you. Our show का नाम yes, of course, Midnight Lounge. अच्छा एक बात करते हैं, एक अजीब सी बात है ना, कभी कभी हम किसी पर्सन से सिर्फ एक बार मिले होते हैं, मे बी सिर्फ 15 मिनट 20 मिनट और एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन, लेकिन उस कॉन्वर्सेशन को सालों बाद भी आपको याद रहती है. फेस याद नहीं होता, उसने क्या पहना था, क्या कहा था, इवन उस वक्त हम कहाँ खड़े थे, सब कुछ याद नहीं रहता. और दूसरी तरफ कल लंच में क्या खाया था वो भी याद नहीं रहता. शायद मेमोरी सिर्फ टाइम के बेसिस पर डिसाइड नहीं करती है कि क्या इम्पॉर्टेंट है. कभी एक छोटा सा एक मोमेंट होता है जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस क्रिएट कर देता है और दिमाग उसे सेव कर लेता है. इसीलिए लाइफ में हर मेमोरेबल पर्सन ज़रूरी नहीं है कि वो सबसे ज़्यादा टाइम तक मिला हो या आपकी लाइफ में रहा हो. कभी कभी एक छोटी सी मुलाकात भी पूरी कहानी छोड़कर चली जाती है. सो मैं कुछ टाइम पहले जब ट्रैवल कर रही थी, तब मैं एक अपने फ्लाई करते टाइम एक बगल वाली सीट पर एक पर्सन से मिली थी, विच वॉज़ वेरी इंप्रेसिव. मुझे लगा कि भाई ये कितना कुछ करते हैं, कितना पढ़ रहे थे उस किताब को जो वो फ्लाइट में बैठे बैठे पढ़ रहे थे. एंड आई वंडर कि 15-20 मिनट या एक घंटे की फ्लाइट में आप कितना कुछ सीखते हो. तो आप बताइए कि कौन है वो पर्सन जिससे आप सिर्फ एक दो बार मिले लेकिन आज तक क्लियरली याद है. 3311-1063 इज माई नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

0: ये है मिडनाइट लाउंज।
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओपनिंग ऑन 19th अगस्त इवनिंग ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा। द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर, बी रेडी टू शॉप।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

ट्रैवल की एक प्रॉब्लम है। हम गूगल मैप्स पर इतना ट्रस्ट करते हैं कि कभी कभी इंसान से ज़्यादा फ़ोन पर भरोसा होता है। टर्न लेफ्ट, टर्न दिस और दैट, हम लेफ्ट रिकैलकुलेटिंग, बस यही करते रहते हैं। अब समझ आता है कि हम कहाँ आ गए हैं, लेकिन कभी कभी वही रॉन्ग टर्न ट्रिप का बेस्ट पार्ट बन जाता है। एक अननोन स्ट्रीट, छोटा सा कैफ़े, ब्यूटिफुल सा व्यू या कोई लोकल प्लेसेस जो आपने आइटनरी में कभी ऐड ही नहीं किए थे, और फिर घर जाकर जब कोई पूछता है कि ट्रिप का बेस्ट पार्ट क्या था, आप वही रैंडम स्टोरी सुनाते हो। मे बी दैट्स द ब्यूटिफुल थिंग अबाउट ट्रैवलिंग, बेस्ट मेमोरीज आर नॉट ऑलवेज प्लान्ड। भाई जब लास्ट टाइम मैंने एक जगह पर ट्रैवल किया था तो वहाँ की लोकल मार्केट मेरा एक्सप्लोर करने का कोई प्लान नहीं था। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, लोकल मार्केट नहीं देखा अगर शहर का तो क्या देखा। भाई मैंने वो एक्सप्लोर किया और बाद में एक्चुअली वो मेरी पूरी जर्नी का बेस्ट पार्ट बन गया, क्योंकि मैंने वहाँ से शॉपिंग की और वो सारी चीज़ें जो मुझे बाकी जगहों पर नहीं मिलती मुझे वहाँ मिल गई। कभी कभी लाइफ भी गूगल मैप्स की तरह होती है, आपको लगता है रूट गलत हो गया और फिर सडनली रिकैलकुलेटिंग और एक नया रास्ता मिल जाता है। आपकी लाइफ या ट्रैवल में कभी कोई रॉन्ग टर्न अनएक्सपेक्टेडली बेस्ट डिसीजन बनाए, बताना ज़रूर। नंबर सेम है 3311063। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

गुड इवनिंग, यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM. दिस इज मी मुस्कान विद यू. और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज. एक कन्फेशन, क्या आपके कार का कोई नाम है? बिकॉज आई जेन्युइनली फील हम इंडियंस किसी चीज़ को घर में लाते हैं तो उसको पर्सनली, मतलब ऐसा लगता है कि उसकी पर्सनैलिटी उसको दे रहे हैं हम. कार का नाम, बाइक का नाम, एलेक्सा से बात, वाईफाई का फनी पासवर्ड, कभी कभी तो फ़ोन भी इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि उससे गिरने पर लगता है कि ओह, इसको कुछ हो तो नहीं गया. बट वाई डू वी डू दिस? मतलब क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट डेली लाइफ का पार्ट बन जाता है, हम उसके साथ मेमोरीज अटैच कर देते हैं. कार सिर्फ कार नहीं होती, उसमें फर्स्ट रोड ट्रिप होती है, फर्स्ट लॉन्ग ड्राइव होती है, फैमिली फाइट्स होती हैं, ब्रेकअप्स होते हैं, लेट नाइट कॉन्वर्सेशंस होती हैं, और बेसिकली ऑब्जेक्ट वही है, स्टोरी हम उसमें भर देते हैं. सो बताइए, आपके कार, बाइक, लैपटॉप या किसी गैजेट का कोई नाम है? एंड प्लीज नो जजमेंट. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. मैं हूँ मुस्कान. नंबर है 3311106. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

गुड इवनिंग, यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम मिडनाइट लाउंज. आज एक डेंजरस सेंटेंस की बात करते हैं. बस 5 मिनट और, भाई ये बहुत डेंजरस है. बाद में 5 मिनट और, इंस्टाग्राम पर 5 मिनट और, यूट्यूब पर बस ये लास्ट वीडियो, और फिर देखते ही देखते आंख खुलती है 45 मिनट जा चुके होते हैं. इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम टाइम को हमेशा एक्यूरेटली एस्टिमेट नहीं करते, स्पेशली जब एक्टिविटी इंजॉयबल हो या अटेंशन कम्प्लीटली उसमें चली गई हो. इसीलिए कभी कभी प्रॉब्लम टाइम की कमी नहीं होता, टाइम की क्वाइटली डिसअपियर होने का होता है. और लाइफ के बाद मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ के बड़े जो लॉसेस हैं वो कभी कभी ना 5-5 मिनट में होते हैं. 5 मिनट किसी और से बात करना, 5 मिनट वॉक जाना, 5 मिनट बस ऐसे ही चुपचाप बैठ जाना, और 5 मिनट सोचते रहना. बाद में मे बी 5 मिनट को सिर्फ स्क्रॉलिंग के लिए रिवर्स नहीं करना चाहिए. आपके 5 मिनट सबसे ज़्यादा कहाँ डिसअपियर होते हैं? फ़ोन पर, बेड में, या फिर यूट्यूब या गॉसिप में? मेरा सबसे ज़्यादा वो 5 मिनट वाला प्रॉब्लम है अलार्म बजने के बाद. मुझे लगता है बस 5 मिनट और, वो 5 मिनट कब 15 मिनट, कब 30 मिनट, कब 45 मिनट बन जाते हैं पता ही नहीं चलता, और फिर मैं भागते भागते अपने सारे काम करती हूँ. साहब मुझे बताइए, नंबर सेम 3311063. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: ये है मिडनाइट लाउंज। ओ नो, फिर से स्कूल। अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अब उसिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है। तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है। अभी जाओ olive.qa पर बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है। स्पॉट्स लिमिटेड है, तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर। मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में। वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
1: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
0: एंड
1: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
0: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
1: कॉल 7022525।
0: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स Gulf on Instagram.
2: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
0: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding.

गुड इवनिंग, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलर 106.3 FM. दिस इज मी मुस्कान विद यू. और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज. होटल रूम में एंटर करते एक अजीब सा सुकून क्यों मिलता है यार. बेड परफेक्टली बना हुआ होता है, टॉवल्स परफेक्टली फोल्डेड होते हैं, रूम एकदम क्लीन. और सबसे ब्यूटीफुल पार्ट, आपको कुछ क्लीन नहीं करना. घर में बेड देखकर ये थॉट आता है कि ये भी करना है. होटल में वही बेड देखकर लगता है कि वाओ, लाइफ इज ब्यूटीफुल. मे बी लग्जरी सिर्फ ब्यूटीफुल रूम या एक्सपेंसिव फैसिलिटीज का नाम नहीं है. कभी कभी लग्जरी का मतलब होता है कुछ टाइम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री होना. कोई लॉन्ड्री नहीं है, कोई डिशेज नहीं है, कोई ग्रॉसरी लिस्ट नहीं है. ये खाना रखा था यहाँ पे, कहाँ गया, क्या बनाना है, और बस आप और आपका टाइम. तो एक इंटरेस्टिंग सवाल है आपसे, आप होटल रूम में एंटर करते ही सबसे पहले क्या करते हो? बेड पर जंप, या फिर फटाफट से आप बाथरूम चेकआउट करते हो कि और मस्त शावर लेंगे, या फिर रूम का टूर लेते हो, या सीधा फूड ऑर्डर करते हो? बाय द वे, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे सबसे पहले बेड पर जंप करना पसंद है, क्योंकि होटल के रूम के जो सारी फैसिलिटीज़ होती हैं वो अलग ही सुकून देती है. ऐसा लगता है कि बस ये एक दिन आप अच्छे से इंजॉय करोगे, कोई टेंशन नहीं होगा. सो आप

जो बताओ कि आपको क्या सबसे ज्यादा पसंद है होटल रूम्स में। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान, नंबर है 3311063। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: हेलो, ये है मिडनाइट लाउंज,
1: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

सो आज ना वेकेशंस और टूर और स्टेकेशंस की बात हो रही है, और इन्हीं सब के बीच में अब मैं आपसे बात करती हूँ द लास्ट डे ऑफ वेकेशन की। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज। सो हॉलीडे का फर्स्ट डे, सूटकेस खुलता है, एक्साइटमेंट होती है, नई जगह, नया खाना, और हम बोलते हैं कि अरे अभी तो पूरा वीक है। और फिर सडनली लास्ट इवनिंग सूटकेस वापस, फ्लाइट कल की, और सडनली वो सेम जगह 10 बार और ज़्यादा सुंदर लगने लगती है। वही रेस्टोरेंट जहाँ हम पहले 3 बार कैजुअली गए थे, अब लगता है कि यार वन लास्ट डिनर। वही रोड वन लास्ट वॉक लगने लगती है, और वही सनसेट सडनली इम्पॉर्टेंट लगने लगता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि समथिंग इज़ एंडिंग, यू नो, चेंज हो रहा है कुछ, केयरफुली उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। एंड दैट्स नॉट जस्ट हॉलीडेज, समटाइम्स लोग, जगह, इवन फेजेस ऑफ लाइफ, बिकॉज प्रीशियस वेन वी रियलाइज दे आर टेम्प्ररी। और अगर आपको आपकी फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन में सिर्फ एक लास्ट इवनिंग मिल जाए, तो वो इवनिंग आप कैसे स्पेंड करना चाहोगे? 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, और ये है मिडनाइट लाउंज।

गुड इवनिंग, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 एफएम। मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज। घर में सब लोग हैं तो नॉर्मल डिनर होगा, लेकिन सब बाहर चले गए, सडनली मास्टर शेफ, यू नो, ऐसा लगता है कि मुस्कान इज इन द किचन। फ्रिज खोला, ये भी है, ये भी डाल देते हैं, चीज तो डेफिनेटली जाएगा, और फिर कुछ ऐसा बन जाता है जिसका नाम गूगल पर भी नहीं मिलता, लेकिन कॉन्फिडेंस एकदम 100%। सो एक्चुअली जब कोई जज नहीं कर रहा होता तो हम एक्सपेरिमेंट्स ज़्यादा फ्रीली कर पाते हैं, क्योंकि फेलियर का ऑडियंस ही नहीं है। और फिर मे बी दैट्स द ट्रू आउटसाइड, यू नो, द किचन टू। कभी कभी हम नए चीज़ों को ट्राई नहीं करते क्योंकि वी आर स्कैर्ड कि समवन विल से ये क्या कर रहे हो या ये क्या बन गया। बट जब नोबडी इज़ वॉचिंग हम सरप्राइजिंगली बहुत ब्रेव हो जाते हैं। सो आप मुझे बताओ, आपने भी कभी ऐसी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाई हैं किचन में? अकेले में बनाया हुआ सबसे वियर्ड बट सरप्राइजिंगली बहुत टेस्टी डिश क्या था आपकी लाइफ का? 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास
1: ये है मिडनाइट लाउंज
2: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
3: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
2: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
3: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओपनिंग ऑन 19th अगस्त इवनिंग ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा। द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर। बी रेडी टू

गुड इवनिंग, दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज। आज शो एंड करने से पहले फोन साइड में रखिए सबसे पहले और अपनी लास्ट वीक की लाइफ के बारे में सोचिए। कुछ मोमेंट्स इंस्टाग्राम पर आए होंगे लेकिन बहुत सारे नहीं। किसी का मैसेज जो देखकर आपके स्माइल आई होगी, गाड़ी में फेवरेट गाना, एक अच्छी चाय, किसी अपने के साथ कोई रैंडम कॉन्वर्सेशन या शायद एक डिफिकल्ट दिन जिसे आपने बिना किसी को बताए समहाउ हैंडल तो कर लिया। नोबडी सॉ इट, नोबडी लाइक्ड इट, नोबडी कमेंटेड, बट यू लिव्ड इट। और शायद लाइफ को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें वही होती हैं जिसके लिए ऑडियंस की ज़रूरत नहीं होती। हर ब्यूटीफुल मोमेंट को प्रूफ की तरह पोस्ट करना ज़रूरी नहीं है, कुछ खुशियाँ सिर्फ खुशियाँ होती हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा पर्सनल है। रिसेंटली आपकी लाइफ में ऐसी क्या खूबसूरत चीज़ हुई जो दुनिया को नहीं सिर्फ आपको पता है? मैं हूँ मुस्कान और आप सुन रहे हैं मिडनाइट लाउंज, जहाँ कुछ स्टोरी शेयर करने के लिए नहीं बस फील करने के लिए होती है। फॉर नाउ आई हैव टू से गुड नाइट, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।

0: तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Morning and night.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।
0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपनिंग ऑन 19th August, ओल्ड पासपोर्ट ऑफ

listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट.

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास

listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास